अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, और अब वक्त हुआ है कार्यक्रम रामचरितमानस का। आज इसमें बालकांड सुनते हैं 109, तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झरते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सची है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है।

सोडारा सोडारा आचारा कामी उन्तुक बेसुक अडाला सबगई बरिकुत सथिला वार्ता बरिता लागू इंस्ट्रुमेंटालिया कोमेंतार लागू राक्यात प्रोग्राम स्पॉटलाइट लागू लागू नॉन फिल्म दा नाहिर्निया सारी आचारा इसुक हारिन्या सोडारा सोडारा अंडा बीसा मंग किरीम कन लापुरान दान सारन अंडा मलालोई पॉस एल अताओ ईमेल हारब दिचातेत ईमेल कामी सबगई बरिकुत ए आई आर तितिक इंडोनेशिया 3732@gmail.com कामी उलांगी ए आई आर तितिक इंडोनेशिया 3732@gmail.com लापुरा नंडा तेतब दितुंगु दिमेजा तुगास कामी दिस्तुदियो दी सीनी।

0: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
4: India and Indonesia are very close and strategic partners.
5: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
4: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉ जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉ जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
2: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़

0: सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
1: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं, 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं, 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जातीं। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9

0: कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48 hours

0: क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी सदर प्रबोवो की दावत पर इंडोनेशिया के 3 रोजा सरकारी दौरे पर कल जकार्ता पहुंचे। खुसूसी खैर सगाली के जज्बे का इजहार करते हुए सदर प्रबोवो बजाते खुद हवाई अड्डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इंडोनेशिया की फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने इंडोनेशिया की फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद वजीर आजम के तैयारे को हिफाजती हिसार में भी फराहम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने इस्तकबाल को नहायत शानदार और दिल को छू लेने वाला करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो सदर प्रबोवो के साथ मुलाकात के मुंतजिर हैं, ताकि भारत इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार दी जा सके, जिसकी बुनियाद 2018 के उनके दौरे के दौरान रखी गई थी। वजीर आजम ने जकार्ता आमद पर पेश किए गए रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों की तारीफ करते हुए कहा कि यह भारत और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तहजीबी सकाफती और रूहानी रिश्तों की अक्कासी करते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के तलबा पर मुश्तमिल समन्वय ग्रुप की जानिब से पेश किए गए भरतनाट्यम रक्स की भी सताइश की। भारतीय बिरादरी के तई तशक्कुर का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जकार्ता में उनके पुरतपाक इस्तकबाल ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। वह होटल पहुंचने पर वहां मौजूद भारतीय बिरादरी ने उनका नहायत जोश व खरोश के साथ खैर मकदम किया। इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वजीर आजम मोदी का यह दौरा भारत और जुनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मईशत इंडोनेशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को एक नई बुलंदी तक ले जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरे के दौरान दिफा, समंदरी सिक्योरिटी, डिजिटल राबताकारी, अहम मादनियात और तजारत के शोबों में कई अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। ये जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के क्याम के बाद वजीर आजम मोदी का इंडोनेशिया का पहला 2 तरफा दौरा है। ये दौरा जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के सदर के योम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खसूसी की हैसियत से भारत के दौरे के बाद हो रहा है। इंडोनेशिया वजीर आजम मोदी के 3 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला है। इस दौरे के अगले मरहले में वो इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा भी करेंगे। जकार्ता से संदीप अंदास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों में इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी में नई तवानाई और उम्मीद पैदा की है। नई दिल्ली में इमदाद बाहमी की वजारत के 5वें योम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 2021 में कायम की गई इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद, शफाफ, टेक्नोलॉजी पर मबनी और मुसाबिकती बना दिया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: उन्होंने कहा कि वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे को दरपेश अहम चैलेंजेस की निशानदेही की, नीज इसकी तरक्की और मसाइल के हल के लिए एक जामे रोड मैप तैयार किया और ऐसी इसलाहात नाफिज की जिन्होंने पूरे इकोसिस्टम को नई शक्ल दी। अमित शाह ने मजीद कहा कि जब भारत 2047 में अपनी आज़ादी की 100 साला तकरीबात मनाएगा तो इमदाद बाहमी की तहरीक एक खुशहाल भारत की मजबूत बुनियाद साबित होगी। 6 जुलाई 2021 को इमदाद बाहमी की वजारत के क़याम को याद करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इस फैसले ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता लाखों अफराद के 75 साल के इंतज़ार को ख़त्म कर दिया। जनाब शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी के शोबे को दहाइयों से नज़रअंदाज किया जा रहा था, ताहम इमदाद बाहमी की वजारत ने इसमें नई जान डाल दी है। उन्होंने इस तनकीद को भी मुस्तरद किया कि यह वजारत रियासतों के इख्तियार में मुदाखलत करेगी। उन्होंने इमदाद बाहमी की वजारत के وصولیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا

0: कि एक मजबूत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया है जिसमें 30 मुख्तलिफ शोबों के 8,58,000 से ज्यादा इमदाद बाहमी सोसाइटियों और उनके 32 करोड़ अरकान का रिकॉर्ड शामिल है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट रुकन डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। इन दोनों ने राम मंदिर दान में मुबैना तौर पर बदउनवानी का मामला सामने आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफा दिया था। ट्रस्ट ने नई तकर्री तक कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। उन्हीं की शिकायत की बुनियाद पर मुबैना तौर पर दान बेजाबतगियों के मामले में FIR दर्ज की गई थी जिसमें अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर करने का भी फैसला किया है और इसके लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। ट्रस्ट के खजांची गोविंद दियोगिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी वाजह किया कि मंदिर को दान किए गए तमाम जेवरात और कीमती अशिया महफूज हैं और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है और तमाम अशिया की तफसीलात ट्रस्ट के पास महफूज हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी शदीद सियासी बुहरान के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने पाकिस्तान हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो 9 जुलाई को हतमी और फैसला कुन एहतजाज किया जाएगा। एक बाजाबता बयान में कमेटी ने ऐलान किया कि उसका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसके मुतालबात पूरे नहीं होते। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रिहायशियों और कश्मीरी बरादरी के अरकान से 9 जुलाई को एहतजाज में शिरकत करने की अपील की है। इतवार को पाकिस्तानी हुकूमत की सख्त कार्रवाई और POK में 600 से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर पाकिस्तानी फौज का जालिमाना रवैया और शदीद हो गया। मुजफ्फराबाद के कई इलाकों से गोलीबारी और झड़पों की इत्तला है। हजारों लोगों ने एहतजाज करके मुबैना नाकाबंदी को खत्म करने, मुवासलाती खदमात की बहाली, खुराक और दवाओं की बिला रुकावट सप्लाई, हिरासत में लिए गए लीडरों की रिहाई और 38 निकाती तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत JAAC पर पाबंदी आयद कर दी जिसके बाद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। एहतजाज के मुंतजमीन का इल्जाम है कि 600 से ज्यादा कारकुनों और सियासी लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही खुराक, आटा और लाजमी दवाओं की सप्लाई को रोककर हुक्काम ने इक्तसादी नाकाबंदी लगा दी है। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वजीर खारजा डॉक्टर SJ शंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा आले खलीफा से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर कतर से बहरीन पहुंचे हैं। ये उनके 4 खलीजी मुल्कों के दौरे का दूसरा मरहला है जो 5 से 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के शाह को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक तमन्नाएं पेश की और बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी की सलामती, तहफ्फुज और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी के अफराद से मुलाकात भी की। अपने इस दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मजकूरा 4 खलीजी मुल्कों के वज़राए खारजा और आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जा सके और इलाकाई हालात व वाक़ियात के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। महाराष्ट्र के साहिली और घाट के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने पालघर, रायगढ़, नासिक और पुणे के घाट इलाकों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब मुंबई समेत साहिली अजला और शुमारी महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जहां बाज़ मुकामात पर औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र इंतजामिया ने एहतियाती इकदाम किए हैं जबकि NDRF और SDRF की टीमों को हसास इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: महाराष्ट्र के घाट के इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है जहां लोनावाला में 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है. मिट्टी के तोदे खिसकने के खतरे के बायस कई सड़कों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद सियाहती मकामात को एहतियातन बंद कर दिया गया है. नासिक जिले में

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। गायन कलाकार थे पंडित प्रशांत मलिक और पंडित निशांत मलिक। राग था ललित। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, बदलती जीवन शैली, बढ़ती उम्र, खेलकूद के दौरान होने वाली चोटें, सड़क दुर्घटनाएं और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं पहले से कहीं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। लेकिन मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और नित नई और आसान तकनीक का विकास हो रहा है। आधुनिक तकनीक ने हमारे जीवन को ज्यादा प्रभावी और आसान बनाया है और रिकवरी का समय भी कम हो गया है। इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राजेश प्रसाद गुप्ता जी को। आप ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
2: यहाँ बुलाने के लिए नमस्कार और धन्यवाद आपको।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक की बात होती है तो हड्डियों के टूटने की बात आती है, चोटें लगने की बात होती है, इंजुरी की बात होती है, लेकिन ये जो समस्याएं हैं आज समय के साथ में कुछ ज्यादा देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों?
2: हड्डी टूटना आजकल ज्यादा ओल्ड एज में खास करके हम ज्यादा देखते हैं, क्योंकि इसमें हड्डी जो होता है कमजोर हो जाता है एज के साथ में। खास करके फीमेल वगैरह में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हड्डी कमजोर जाती है। और हड्डी जो है इसमें जैसे 30 एज के बाद हड्डी बनता कम है और टूटना ज्यादा शुरू होता है। टूटना मींस मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बोलते हैं, जिसमें बोन का फॉर्मेशन होता है। तो वो

0: के साथ कम होते चलता है,
1: यानी तो होता भी है तो धीरे धीरे होता है।
0: हाँ, धीरे धीरे होता है, ठीक है। और साथ में अगर कोई अल्कोहलिक हो, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, और कुछ पेशेंट जैसे आस्थमा वगैरह का हो जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह पे होते हैं, तो वैसे लोगों का हड्डी और कमजोर हो जाता है, तो उन लोगों में हड्डी टूटने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
1: आपने एक बड़ी बात कही डॉक्टर साहब कि जो अल्कोहलिक है उनमें जो हड्डी का जो बोन का जो निर्माण होता है या फिर जो डेंसिटी होती है वो कुछ कम हो जाता है,
0: जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होता है जिससे कि बोन फॉर्मेशन होता है उसको वो रोकता है, तो उसके वजह से फिर हड्डी कमजोर होना शुरू हो जाता है।
1: तो आजकल जो नई तकनीक आ रही है तो इन समस्याओं को निपटने में कहां तक सक्षम है और कितनी जल्दी कितना किस प्रकार का प्रभावी है?
0: सबसे पहले तो पेशेंट्स को हम ये काउंसलिंग कर सकते हैं कि आप अल्कोहल नहीं लें, स्मोकिंग नहीं करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए आप। जैसे विटामिन डी का कमी होता है सब में आजकल, विटामिन डी में जैसे कि आजकल घर देखते हैं कि एसी में रहते हैं लोग, और उसके बाद बेसमेंट में जाते हैं गाड़ी में, वहां से फिर ऑफिस आते हैं, ऑफिस में आने के बाद फिर एसी में बंद रहते हैं, वहां पे तो सन एक्सपोजर बिल्कुल जीरो होता है, तो उसके वजह से भी हड्डी कमजोर होते हैं। और उसके बाद फिर कुछ लोग एसपीएफ सनस्क्रीन प्रोटेक्शन फैक्टर जिसको बोलते हैं 30-40% वो यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका अल्ट्रावायलेट रेज नहीं मिलता है, फिर उससे भी हड्डी कमजोर होती है। और तकनीक की बात जहां तक है तो ये डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर किस लेवल का है। और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने का भी पहले उपाय होता है जिसमें कि हम बोन डेंसिटी डेक्सा बोलते हैं, डेक्सा स्कैन करते हैं, बीएमडी करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कितना ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपिनिया है, किस लेवल का है, और फिर बहुत कुछ ब्लड टेस्ट करने के बाद कुछ एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिसिन वगैरह आता है जैसे बिस्फोस्फोनेट, उसमें टेरीपेराटाइड जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ, डेनोसुमाब, ये सब, तो ये मेडिसिन देने से भी ओल्ड एज में और बोन फॉर्मेशन को बढ़ाता है और टूटने की प्रक्रिया को थोड़ा कम करता है, तो ये भी प्रॉपर इवेल्युएशन के बाद हम लोग देते हैं।
1: ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या होती है वो महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है, ऐसा क्यों?
0: क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, मेनोपॉज का जब कंडीशन आता है तो कुछ हार्मोन्स होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ाता है, बोन की फॉर्मेशन को कम करता है, उसके वजह से महिलाओं में ज्यादा होता है। साथ में इसमें हम बोलते हैं कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए, रनिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, इससे क्या होता है कि बोन का फॉर्मेशन को बढ़ाता है और आप उससे अपना हड्डी को मजबूत कर सकते।
1: तो बच्चों में जो बोन का जो फॉर्मेशन होता है बड़ी तेजी के साथ होता है क्योंकि उम्र कम होती है, उनमें जो फॉर्मेशन है वो तेजी से होता है,
0: उसमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बोलेंगे तो ज्यादा होता है। ऑस्टियोब्लास्टिक मतलब बोन का फॉर्मेशन, और बोन का टूटना उसको मेडिकल टर्म में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बोलते हैं। 30-32 के एज तक ऑस्टियोब्लास्टिक ज्यादा होता है, ऑस्टियोक्लास्टिक कम होता है, लेकिन 34 के बाद बोला जाता है कि ऑस्टियोक्लास्टिक ज्यादा होता है, ऑस्टियोब्लास्टिक कम होता है, इसीलिए हमारा हड्डी धीरे धीरे कमजोर होते है। उससे पहले भी अगर आप जैसे बोलते हैं कि दूध पियो, कैल्शियम का रिच सोर्स लो, आप एक्सरसाइज करो, तो उससे फिर आप अपने हड्डी को मजबूत करते हैं ताकि फ्यूचर में आपका फ्रैक्चर नहीं हो और आपका हड्डी मजबूत रहे।
1: आजकल किस प्रकार की तकनीक स्पोर्ट्स इंजरी को लेकर के आई है जिससे कि और ज्यादा आसान हो गई?
0: देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज की बात करें तो मोस्ट कॉमन नी में इंजरी होता है, एंकल में होता है, शोल्डर में होता है, बैक पेन भी होता है,
1: किसी भी प्लेयर्स के लिए,
0: किसी भी प्लेयर्स में, और बहुत सारा स्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं उसके ऊपर भी। जैसे हम नी इंजरीज की बात करें तो नी में सबसे ज्यादा ACL इंजरी होता है, मेनिस्कस इंजरी होता है, और साथ में वहां पे मीडियल कोलेक्टर लिगामेंट्स वगैरह का। इसमें जो हम सर्जरी करते हैं सबसे पहले पेशेंट्स को तो हम इवेल्युएट करते हैं, तो उसमें MRI करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पहले किया हमने, फिर MRI किया, तो डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं।
1: इसमें भी तो उम्र मायने रखता है?
0: उम्र मायने रखता है, लेकिन ACL इंजरीज वगैरह किसी भी एज में हो सकता है, क्योंकि इसका बेसिकली एक तो जब आप स्पोर्ट्स करते हैं तो किस ढंग से खेलते हैं, आपका वहां पे कैसे मतलब लैंडिंग टेक्निक होता है। जैसे ACL इंजरीज यूजुअली होता है उसको वेलगस एबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन, यानी जब सरफेस पे एक प्रॉपर ढंग से मतलब एक एबनॉर्मल ट्विस्टिंग होता है नी का, तब होता है। तो इसको हम डायग्नोसिस पहले कंफर्म किया, उसके बाद इसमें जो आजकल नया टेक्नोलॉजी या काफी इंडिया में डॉक्टर्स इसमें ट्रेंड हो चुके हैं, ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। ऑर्थोस्कोपिक मतलब की होल सर्जरी, और दूरबीन वाली सर्जरी भी लोग इसको बोलते हैं, जिसमें कि मात्र 8 mm का पोर्ट बनाते हैं, हम दो छेद बनाते हैं
1: माइक्रोस्कोपिक में,
0: माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं, ऑर्थोस्कोपिक बोलते हैं। ऑर्थोस्कोपिक मतलब स्कोपिक मतलब व्यू, ऑर्थो मतलब ज्वाइंट्स, तो ज्वाइंट्स को देख रहे हैं उसको ऑर्थोस्कोपिक बोलते हैं, तो मेडिकल टर्म एक्जेक्टली ऑर्थोस्कोपिक। तो उसमें फिर देखते हैं कि ACL टियर है, तो उसमें सिर्फ 8 mm के पोर्ट से आप एक साइड से आप स्कोप डालते हैं, दूसरा साइड से इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, और फिर इसमें हम ग्राफ्ट निकालते हैं, हैमस्ट्रिंग्स ग्राफ्ट, उसको वो बेसिकली एक टेंडन होता है, उसको फोल्ड करके और उसका निकालने का एक टेक्निक होता है, फिर हम उसको उसमें फिक्स करते हैं, और इससे रिकवरी काफी फास्ट होता है। मेनिस्कस इंजरीज भी हम वैसे ही डील करते हैं, इसमें हमारे पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है जो मतलब छोटा सा मतलब 8 mm के पोर्ट से उसमें इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, फिर उससे हम मेनिस्कस को रिपेयर कर देते हैं, और मेनिस्कस अगर रिपेयर होने लायक नहीं रहता तो मेनिसेक्टोमी करते हैं।
1: तो ये बच्चों में भी किया जा सकता है या फिर बड़ों में या फिर किसी में भी किया जा सकता है?
0: बच्चों में भी किया जा सकता है, उसके लिए वहाँ पे बच्चों में जो होता है ग्रोथ प्लेट होता है। ग्रोथ प्लेट का मतलब क्या होता है, जहाँ से हमारा आपका वृद्धि होता है जब तक हम 21-22 साल के होते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले MRI और CT स्कैन या एक्सरे में देखते हैं कि बोन फ्यूज हुआ है कि नहीं, तो उसमें भी ऑर्थोस्कोपिक करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन उसमें हमें उस ग्रोथ पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि उससे फ्यूचर में उनका ग्रोथ रुक सकता है या डिफॉर्मिटी डेवलप कर सकता है उस पर्टिकुलर ज्वाइंट का, तो उसको स्पेशल टेक्निक से किया जाता है, मतलब उसको स्पेयर करते हुए उस पार्ट को तब करते हैं ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी, लेकिन करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बार जहां पर

0: इम्पोर्टेंट है बेसिकली, जैसे ACL सर्जरी किया किसी का, नी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद, तो उसमें एक पर्टिकुलर वीक में कितना रेंज ऑफ मोशन लाना है, स्ट्रेंथ कितना बढ़ाना है, जैसे कि हैमस्ट्रिंग्स मसल्स, क्वाड्रिसेप्स मसल्स और आपको ग्लूटियल मसल्स, कोर स्टेबिलिटी, तो ये सब एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू ही होता है। और अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं कराते हैं तो मसल्स वेस्ट होता है, नी में स्टिफनेस डेवलप कर जाता है, तो रिकवरी बहुत स्लो हो जाता है। क्योंकि देखिए शरीर बोन और मसल से बना होता है, बोन एक ढांचा होता है, मसल्स आपको ताकत प्रोवाइड करता है, जब मसल्स मजबूत होता है तो ज्वाइंट के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, तो इसीलिए फिजियोथेरेपी से मसल्स स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होता है।
1: डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी में आर्थ्रोस्कोपी का क्या रोल होता है और इसमें कौन कौन सी तकनीक होती है?
0: आर्थ्रोस्कोपी में जैसे हमने पहले अभी जस्ट डिस्कस किया था कि जो की होल सर्जरी होता है, दूरबीन वाली सर्जरी होती है, तो उससे जैसे कि नी का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, शोल्डर में जैसे सुने होंगे कि शोल्डर डिसलोकेट करता है,
1: तो उसमें जो क्रिकेट प्लेयर्स को
0: तो शोल्डर डिसलोकेट करता है, तो शोल्डर जब डिसलोकेट करता है उसको बैंकार्ट लेजन बोलते हैं, और रोटेटर कप इंजरीज वगैरह होता है, और उसमें जैसे बैंकार्ट लेजन हुआ तो उसमें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से उसमें भी सिर्फ हम शोल्डर के अराउंड कुछ जैसे 8 mm का या 10 mm का मैक्सिमम बोल सकते हैं पोर्ट बनाते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा इंसिजन होता है, उससे फिर हम उसमें सर्जरी कर डालते हैं। शोल्डर सर्जरी अगर बैंकार्ट रिपेयर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स 3 to 4 months में रिकवर कर जाते हैं। अगर नी की बात करें हम ACL सर्जरीज का, तो पेशेंट चलना शुरू कर देते हैं 1-2 महीने में ही, लेकिन रनिंग, जॉगिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए 6 to 9 months भी टाइम लगता है। वो अगेन डिपेंड करता है कि फिजियोथेरेपी कैसा हुआ, स्ट्रेंथ कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
1: क्या दोबारा एज यूजुअल वो स्पोर्ट्स खेल सकता है?
0: बिल्कुल खेल सकता है, अच्छा सर्जरी होना और प्रॉपर फिजियोथेरेपी के बाद बिल्कुल खेलते हैं।
1: डॉक्टर, ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी क्या होता है, इसमें किस प्रकार की तकनीक इस्तेमाल किया जाता है?
0: जैसे एक फ्रैक्चर में भी हम लोग मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी का यूज करते हैं,
1: सिर्फ फ्रैक्चर में
0: करते हैं, और आप आर्थ्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। तो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में कैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, ओल्ड एज में फ्रैक्चर फीमर होता है, प्रॉक्सिमल फीमर का फ्रैक्चर होता है जो ट्रिवियल ट्रॉमा ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है, तो उसमें हम बड़ा सा रॉड डाल देते हैं और जैसे फीमर का टिप ऑफ प्रोकेंटर बोलते हैं वहां से लेकर के नी जॉइंट तक फीमर का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, उसमें आप देखेंगे तो इंसिजन जो होता है हार्डली मतलब 2.5 centimeters का मैक्सिमम, 2-3 incisions होता है, उससे ही कर देते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि इंजरी होने के बाद पैरों में या हाथों में कोई छोटी सी प्लेट डाल देते हैं या फिर रॉड डाल देते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा, तो इसे कितने दिनों के बाद में निकाल देना चाहिए, और अगर नहीं निकालते हैं तो इससे क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं आगे चल के?
0: जैसे जब हम इम्प्लांट लगाते हैं कोई भी रॉड, प्लेट, स्क्रू वगैरह, तो इसमें 1.5 से 2 साल के बाद निकाल सकते हैं
1: जी।
0: और इंडिकेशन जो निकालने का होता है, अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो तो इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो, और कभी कोई पेशेंट्स खुद बोले कि नहीं हमको निकलवाना है तो, और मैं अपने पेशेंट्स को यूजुअली बोलता हूँ कि 1.5-2 साल के बाद निकाल लें, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी लगता है बाद में कि हमने क्यों नहीं निकलवाया। अगर आप 1.5-2 साल के बाद नहीं निकालते हैं तो बाद में क्या होता है कि उस प्लेट को निकालना मुश्किल हो जाता है, जैसे 3-4 साल हो गया लगभग, क्योंकि प्लेट के ऊपर बोन जमा हो जाता है,
1: बोन जमा हो जाता है और मसल्स भी आ जाते हैं।
0: मसल्स को तो हम स्प्लिट करके बगल में कर देते हैं, लेकिन बोन जमा हो जाता है, साथ में स्क्रू और प्लेट के बीच में कोल्ड वेल्डिंग बोल सकते हैं, जो स्क्रू उससे निकलता ही नहीं है।
1: अच्छा,
0: जैसे रिसेंटली भी मैंने अभी 8-10 years मतलब पहले सर्जरी हुआ था, ह्यूमरस का फ्रैक्चर था, तो उसका मैंने प्लेट निकाला, लेकिन बहुत मुश्किल हुई निकालने में, क्योंकि आप जब निकालते हैं तो उस वक्त फिर दोबारा फ्रैक्चर होने की भी संभावना होती है। देखिए, जब हम प्लेट और नेल और स्क्रू लगाते हैं, जस्ट हम फ्रैक्चर को अपने जगह पे लगाने के लिए लगाते हैं, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डी को जोड़ता नहीं है, उसका एक टाइम फ्रेम होता है जुड़ने का, जो 6 वीक में जुड़ जाता है और 1.5 से 2 साल में हड्डी मजबूत हो जाता है, फिर उसका प्लेट स्क्रू रॉड का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, तो हम उसको निकाल सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आजकल नी रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट की चर्चा काफी सुनते हैं, इसमें कितनी प्रगति हुई है, कहां तक प्रगति हुई?
0: नी रिप्लेसमेंट में काफी प्रगति हुआ है इंडिया में, पहले जो था और अभी भी कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट, इसमें कंप्यूटर असिस्टेड नेविगेशन और आजकल रोबोटिक, उसका भी कंसेप्ट है, और रोबोटिक अभी जस्ट 4-5 साल से हो रहा है, 6 साल से बोल सकते हैं मैक्सिमम, तो रोबोटिक भी ठीक है, लेकिन इसमें इंसिजन का पूछते हैं बहुत पेशेंट्स कितना बड़ा रहता है, तो इंसिजन में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, उतना ही इंसिजन यूज करते हैं, और रोबोटिक कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट नहीं करता है, हार्डली 2 मिनट के लिए एक बोन का मतलब कट करता है, प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए हेल्प करता है, तो अभी ये नया तकनीकी है, तो अभी देखना होगा फ्यूचर में कि इससे कितना कॉम्प्लिकेशन होता है और कितना बेटर है, लेकिन कुछ स्टडीज अभी आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि कॉम्प्लिकेशन इसमें रोबोटिक में हो रहा है, तो कन्वेंशनल भी अच्छा है, और इसके बारे में फ्यूचर में पता चलेगा
1: जी। डॉक्टर साहब, ऑर्थोपेडिक इंजरी जब हो जाता है तो हॉट थेरेपी एंड कोल्ड थेरेपी, इन दोनों का क्या रोल होता है?
0: देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये मैक्सिमम क्लिनिक्स में भी पूछते हैं, हॉस्पिटल्स में जब हम पेशेंट देखते हैं, तो देखिए जैसे किसी को चोट लगा, एक्यूट इंजरीज होता है वहां पे, तो एक्यूट इंजरीज में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स फटता है, ब्लड वेसल्स फटने की वजह से क्या होता है कि वहां पे ब्लड उड़ जाता है, तो वो जाने से फिर वहां पे स्वेलिंग होता है, एडिमा होता है, तो वो दर्द को और बढ़ाता है, तो अगर आप उस वक्त हॉट वाटर फर्मेंटेशन करते हैं, मसाज करते हैं, कोई जेल वगैरह यूज करते हैं, तो वहां और ये ब्लड जाएगा और स्वेलिंग और दर्द को बढ़ाएगा, इसलिए जब चोट लगता है एक्यूट कंडीशन हम 72 आवर्स कंसीडर करते हैं, लेकिन और मेरे ख्याल से ज्यादा 2-3 दिन और मान करके चलना चाहिए, जब आप बर्फ से सिकाई करते हैं उस वक्त, तो क्या करता है वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, यानी ब्लड वेसल्स ब्लड वहां पे जाता नहीं है, तो उससे आपका स्वेलिंग कम होता है और एडिमा कम होता है, तो दर्द को कम करता है
1: जी।
0: और अगर कोई पुराना दर्द हो जिसको हम क्रोनिक पेन बोलते हैं, जैसे नी पेन, बैक पेन वगैरह, तो उसमें गर्म पानी से ही सिकाई करना चाहिए, मसाज करना चाहिए, कोई जेल वगैरह यूज

0: चाहिए, क्योंकि वहां पे जब ये करते हैं आप गर्म पानी सिकाई करते हैं तो वेसोडायलिटेशन होता है, तो ब्लड वहां पे और जाता है, तो उससे क्या होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है और न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है, तो वो आपको उसमें हेल्प करता है। एक तीसरा चीज होता है कॉन्ट्रास्ट बाथ, जिसमें बोलते हैं 20 सेकेंड्स गर्म पानी में, 20 सेकेंड्स ठंडा पानी में। तो ये जैसे कि प्लांटर फेसियटिस वगैरह का एक एग्जाम्पल जिसमें उसमें बोलते हैं पेशेंट्स को, तो उससे वेसो कंस्ट्रिक्शन वेसोडायलिटेशन होता है वो पेशेंट्स को हेल्पफुल होता है। और लेकिन ये कुछ करने से पहले डॉक्टर के एडवाइस से करना।
1: जी डॉक्टर, कई बार ये भी देखा जाता है कभी पैर मुड़ जाता है तो तुरंत ही समझ में नहीं आती क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे?
0: देखिए ये आपने एग्जांपल दिया एंकल स्प्रेन, तो एंकल स्प्रेन इसको हम ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, ट्विस्ट कितना हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एंकल स्प्रेन में क्या होता है, उस वक्त आपको आइस ही करना है,
1: आइस करना है,
0: मसाज नहीं करना है, गर्म पानी नहीं, कोई जेल वगैरह यूज नहीं करना है, तो उससे आपको उसमें हेल्प मिलेगा। और इसको फिर हम ग्रेड करते हैं 1, 2, 3। ग्रेड 1 का मतलब क्या होता है, आप लिगामेंट को कंपेयर कर सकते हैं एक रस्सी से जो दो बोन को बांध करके रखता है, तो ग्रेड 1 का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत ट्विस्ट होता है यानी लिगामेंट ऑलमोस्ट इंटैक्ट रहता है उसमें। ग्रेड 2 में ऑलमोस्ट 50% टेयर हो जाता है, उसमें दर्द और स्वेलिंग जल्दी डेवलप करता है। ग्रेड 3 का मतलब होता है कि काफी कंप्लीट टेयर हो गया लिगामेंट। तो ये क्लिनिकल असेसमेंट एक्सरे करके देखते हैं कि फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, उसमें कभी कभी फ्रैक्चर भी होता है, और फिर क्लिनिकली देखने के बाद एसेस करते हैं, प्लास्टर मेडिसिन वगैरह देते हैं।
1: एक आखिरी प्रश्न ये है कि स्टेम सेल थेरेपी और पीआरपी ये क्या है?
0: पीआरपी में क्या करते हैं कि पेशेंट से ही ब्लड निकाल करके और उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, और सेंट्रीफ्यूग करने के बाद उसमें एक फ्लफी लेयर होता है, तो उसको हम निकाल करके फिर ज्वाइंट्स में इंजेक्ट करते हैं, या जैसे किसी को टेनिस एल्बो का नाम सुने होंगे, टेंडन इंजरीज होता है, उसमें बहुत सारा ग्रोथ फैक्टर वगैरह होता है, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि मतलब ये आपको हीलिंग में और ये प्रोटेक्ट करता है और इसको बढ़ाता है। स्टेम सेल थेरेपी भी ऑलमोस्ट सेम इंजरीज में ही यूज करते हैं, जैसे टेंडन इंजरीज वगैरह हो गया, या फिर नी रिप्लेस, इनफैक्ट मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस अपनी होता है उसमें भी यूज करते हैं। ये सब अभी अंडर स्टडी ही बोल सकते हैं, कुछ पेशेंट्स को इसमें बेनिफिट मिलता है, कुछ को नहीं भी मिलता है।
1: ये कुछ उम्र के अनुसार भी हो सकता है बेनिफिट मिल सकता होगा,
0: जैसे हम नी की अगर बात करें, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है, तो उसमें मैं रिकमेंड करता हूँ ग्रेड 2 ग्रेड 3 तक मतलब पीआरपी इंजेक्शन के लिए, क्योंकि ग्रेड 4 में फिर उसका हेल्पफुल नहीं होता है। लेकिन इसे आपको फायदा होगा नहीं होगा, नुकसान कोई नहीं होता है। जैसे पहले हम लोग स्टेरॉइड्स वगैरह ज्यादा यूज करते थे, तो स्टेरॉइड्स में नुकसान मतलब फायदा भी करता है लेकिन नुकसान होने की संभावना होता है, इसका एक पॉजिटिव बेनिफिट है कि आपको नुकसान नहीं होगा।
1: तो डॉक्टर, चलते चलते जिनको स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है या फिर ऑर्थोपेडिक की जो समस्या है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
0: स्पोर्ट्स वाले को मैं बोलना चाहूंगा कि प्रॉपर टेक्निक से खेलें, लैंडिंग टेक्निक वगैरह जैसे वो इंपॉर्टेंट है, अच्छा लाइफ स्टाइल, ये सब चीज पे ध्यान दें।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और ऑर्थोपेडिक की जो समस्या है और स्पोर्ट्स इंजरी के विषय में जो समस्याएं हैं और जो निदान है उनके विषय में आपने इतनी विस्तार से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला और यहाँ तक आए।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पे बुलाया इस चीज के लिए।
2: और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: मीडियम वेव 306।

su halku tan che mushkil kud sab jaan.

ضمائر من ربكم

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड, हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में

0: ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President, in Jakarta, Mr. Modi said, growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration.
2: Aaj humne defense exchange, disaster management aur industrial sahyog badhane par sahamati banayi. Ab hum dono deshon ke coast guards हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture and education. Expressing confidence in the future of bilateral ties, he said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today.
2: हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK, the Jammu and Kashmir Joint Awami Action Committee has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on the 9th of July if their conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. The sixth batch of pilgrims for the ongoing Sri Amarnath Ji Yatra was flagged off from the Bhagwati Nagar base camp in

0: 만든 हर घर की अपनी एक कहानी होती है, हर आंगन की अपनी एक धूप होती है, हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। बस जरूरत होती है उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की, जो अक्सर हमारी नजरों के सामने होकर भी अनदेखी रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 MHz FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन, और साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। तो आइए कुछ पल निकालते हैं अपने लिए और सजाते हैं इस महफिल को मुस्कान और जानकारी के मधुर गीतों के रंग से। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर सोनाली,
1: और मैं हूं रश्मि कुकरेती। सोनाली तुम्हें और इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को और FM गोल्ड दिल्ली के चैनल के सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: होठों में बात हम दबा कर नहीं आए, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सवाल, है ना रश्मि जी?
1: जी बिल्कुल, और बड़ा मजेदार सवाल है आज का।
0: बिल्कुल, तो हमारा सवाल आपके साथ यही है कि रसोई में हर किसी ने कुछ न कुछ काम ऐसा किया है जिसमें उसको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती हुई है उससे, है ना? तो आपकी रसोई से जुड़ी पहली ऐसी कौन सी गलती है, या ऐसी कौन सी गलती है जो आपको लगातार परेशान

0: फिल्म ज्वेल थीफ से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। और दोस्तों, कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो समय के साथ पुरानी नहीं पड़ती, उन्हें हर पीढ़ी पढ़ती है और हर बार उनमें अपने समय की सच्चाई ढूंढ लेती है। हिंदी साहित्य में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम ऐसी ही रचनाकारों में लिया जाता है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं।
1: बिल्कुल, और उनकी लिखी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है सोनाली, उसने कहा था, वो कहानी तो हिंदी की पहली आधुनिक कहानी उसको कहा जा सकता है। और मैं बताऊं सोनाली, वो केवल प्रेम कहानी नहीं है, वो तो वचन, कर्तव्य और त्याग की ऐसी कथा है जो सच में पाठकों का मन आज भी छू लेती है।
0: सच बात कह रही हैं आप रश्मि जी। और हम अपने दर्शकों को बता दें, आज यानी 7 जुलाई 1883 को जयपुर में उनका जन्म हुआ था। और ना इन्होंने ना संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, पाली और इतिहास के बहुत गहरी अध्ययन इन्होंने किया था और बहुत कम लिखा, लेकिन जो लिखा वो अमर हो गया है।
1: बिल्कुल, और उनका मानना था कि शब्द तभी सार्थक हैं जब उनमें जीवन की सच्चाई झलकती हो। और शायद यही कारण है कि इतना समय बीत गया, एक सदी से भी अधिक बीत गया, लेकिन उनके बाद उनकी रचनाएं उतनी ही ताजा महसूस होती हैं। साहित्य को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं माना, बल्कि मनुष्य और समाज को समझने का एक सशक्त माध्यम बनाया।
0: बिल्कुल सही रश्मि जी। और आज ना जब तेजी से समय बदल रहा है, तो

के समय में हम जी रहे हैं जहाँ पर गुलेरी जी का जो साहित्य है ना वो हमें याद दिलाता है कि संवेदनाएं कभी पुरानी नहीं होती है ना, अच्छी रचनाएं समय के साथ आगे चलती रहती हैं। तो बस आइए सुनते हैं ये गीत।

0: फिल्म उसने कहा था, इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। और रश्मि जी आपको पता है हमारा जो सवाल था ना कि रसोई की सबसे मजेदार गलती आपकी क्या थी, तो बड़े प्यारे प्यारे और बहुत मजेदार से रिस्पांस हमें मिले हैं।
1: तो पहली मेल कौन सी है?
0: सबसे पहले तो देखिए नवीन भाटिया जी है मोती नगर से, लिखते हैं कि फर्स्ट टाइम जब चावल बनाने थे तो उसमें नमक की जगह चीनी डाल दी थी और ना उसके उसमें फिर वो मीठे चावल बन गए और सबने उसे खाया,
1: यानी एक नया बिल्कुल डिश तैयार हो गया है ना।
0: और मतलब नवीन जी कितना अच्छा होता है, उसमें थोड़ी सी दूध डाल देते हल्की सी इलायची है ना।
1: और एक और मेल मेरे पास आ गई है, आप हैं अलमास औरंगाबाद महाराष्ट्र से, वो अपना अनुभव बता रही है कि चाय गैस पर रखकर फूल गई और वो जल गई। भाई हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, शुरुआत में गड़बड़ हो ही जाती है।
0: बिल्कुल। और देखिए इसी तरह से खुशबू जी भी हमारे साथ जुड़ी है, ये रोहिणी दिल्ली से हमारे साथ है और ये हमें नमस्ते कह रही है। आपको भी हमारा नमस्कार खुशबू जी और शुक्रिया बने रहने के लिए। फिर हमारे साथ मनीषा जुड़ी हुई है और वो भी कह रही है कि उन्हें गाने अच्छे लगे और शुरुआत उन्हें अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोस्तों का, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आपका साथ ही तो हमारे।
1: और सुनारी एक गलती मैं अपनी बताऊं जो मैंने की थी।
0: जरूर जरूर।
1: जब मैंने पहली बार आटा गूंधा तो मैंने सच बताऊं इतना पानी डाल दिया कि वो मतलब बनाने लायक ही नहीं रहा, और फिर आटा डालना और पानी डालना वो सिलसिला जारी रहा और बिल्कुल अजीब सा ही हो गया
0: तो चार रोटी की जगह 40 रोटी का आटा हो गया होगा, है ना।
1: तो ऐसी गलतियां की है, लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही होता है, पहला कदम में तो गलतियां माफ भी की जा सकती है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है मेरी गलती क्या थी?
1: जी,
0: भिंडी की सब्जी बनाने गई थी, उसमें मैंने पानी डाल दिया।
1: वाह। तो हमें यकीन है आपने भी ऐसी कुछ मजेदार गलतियां जरूर की होंगी जब आपका सफर शुरू हुआ होगा मजेदार रसोई का। तो लिख भेजिए अपना जवाब, हमारा ईमेल एड्रेस है
0: fmgoldga@gmail.com। तो चलिए रश्मि जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमने अक्सर गौर किया है कि घर में बहस ज्यादातर किसी बड़ी बात पर नहीं होती, और क्या होता है कि जब रिश्तों की बात चलती है तो हम अक्सर उन रिश्तों के बारे में बात करते हैं जिनके साथ हमारा जीवन जुड़ा होता है, और इसी तरह एक रिश्ता होता है जीवन साथी का, है ना?
1: जी बिल्कुल। कभी आपने गौर किया है सोनाली कि जो ये छोटी छोटी बातें होती है ना, ये मन में जगह बना लेती है, और कब साथ वाले दो लोग एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे से आगे निकलने लगते हैं पता ही नहीं चलता।
0: बिल्कुल सही बात है। और ना अक्सर ये हम देखते हैं कि हम लोग हिसाब किताब रखने लग जाते हैं, जबकि जीवन साथी का रिश्ता हिसाब रखने का नहीं है, बल्कि ये तो साथ निभाने का रिश्ता है।
1: बिल्कुल।
0: है ना, हर दिन बराबर नहीं होता, कभी एक मजबूत होता है तो कभी दूसरा मजबूत होता है। तो अक्सर हमने देखा है रश्मि जी कि कभी कोई थक जाए तो उसको बस और किसी चीज की जरूरत नहीं होती, आपके प्यार भरे साथ की, आपके कंधे की, है ना।
1: बिल्कुल, यही तो इस रिश्ते की खूबसूरती है, क्योंकि भाई सोनाली जिंदगी कोई प्रतियोगिता थोड़ी है जहां हर दिन जीतना जरूरी हो, और घर भी कोई मैदान नहीं है कि हमें अपनी बात भाई मनवा के ही दम लेना है। घर तो वो जगह है जहाँ दो लोग मिलकर एक दूसरे की कमजोरियों को ढकते हैं,
0: क्या बात है,
1: हाँ। एक दूसरे की खुशियों को बढ़ाते हैं,
0: सच में। और देखती यही तो बात है कि जीवन साथी वही होता है जो हमारी हर बात से जरूरी नहीं है कि सहमत हो, है ना,
1: हाँ।
0: बल्कि वो तो ऐसा रिश्ता है जो असहमति के बावजूद उस रिश्ते में मिठास बनाए रखता है।
1: मैं तो कहूंगी यही तो नमक है जिंदगी का,
0: सच बात
1: है ना। तो भाई रसोई की बात हो रही है, मैं देख रही हूँ सोनाली कभी तुम मीठे को लेकर आ रही हो तो कभी मैं नमक डाल रही हूँ, है ना, रिश्तों में भी। तो आज जरा अपने रिश्ते को भी एक मुस्कान दीजिए, हो सकता है किसी एक छोटी सी मैं की जगह अगर आप हम पर आ जाएं तो बहुत सारी सी अनकही दूरियां अपने आप मिट जाती है ना।
0: और आपको पता है बातों में हमारी नमक और मिठास क्यों आ रही है, सवाल भी तो उसी से जुड़ा है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: तो हम अपने दोस्तों की बातें शुमार करेंगे, पहले ही गाना सुनते हैं।

0: देखिए बाहों में फूल खिल रहे थे, फिल्म थी चुपके चुपके और स्वर थे लता मंगेशकर के साथ मुकेश के
1: जी। और जो सवाल हमने पूछा था उसका जवाब जो है लगातार आता चला जा रहा है, बहुत सारे जवाब हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। तो ये कामायनी लक्ष्मी नगर से कह रही है भाई दूध उबल गया है और ये गलती आज तक होती रहती है, अक्सर ही भूल जाती हूँ मैं तो दूध गैस पर रखकर। भाई मिल्क कुकर भी आता है ना कामायनी, तो आप वो ले सकती हैं और उस सिम पर अगर करेंगी तो मुझे लगता है दूध उबलेगा नहीं, है ना।
0: हाँ बिल्कुल। और इसी तरह से ना मेरे पास भी मैसेज आया है, ये है श्यामली से राधा वासु, ये लिख रही है कि शादी के बाद हलवा बनाया था तो इनकी मम्मी जी ने बोला कि सूजी से 2 गुनी चीनी डालना, तो उन्होंने 4 गुनी डाल दी।
1: वाह,
0: वो हलवा तो नहीं बना, बर्फी जरूर बन गई
1: जी।
0: तो देखिए बना तो ना कुछ, तो अच्छा ही
1: बिल्कुल
0: बना।
1: और महेश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से और वो कह रहे हैं सोनाली जी रश्मि जी नमस्कार, अक्सर रसोई में गलतियां हो जाती हैं जैसे कि चाय का कप चढ़ाकर आप भूल गए, या ऐसा ही कुछ हमारे घर में भी हुआ, भाई कुकर में दाल चढ़ाकर जो मेरी मिसेज हैं वो पार्क में नीचे चली गई और भूल गई कि कुकर में दाल चढ़ा रखी है, जब याद आया तो घर में आकर देखा कि भाई पूरी तरह से कुकर जल चुका था और फिर बहुत बुरा लगा उनको। ये सारी गलतियां हो जाती है भाई, ये गलती नहीं होनी चाहिए, कुकर के मामले में सावधान रहना चाहिए, रसोई में वैसे तो सावधानी से ही काम करना चाहिए क्योंकि हम आग पर खेल रहे होते हैं ना,
0: बिल्कुल आग से, आग से खेल रहे होते हैं।
1: हालांकि महिलाएं तो आग से खेल सकती हैं, उनको
0: तो
1: आता है,
0: हम जाबाजों को इसका ख्याल रखना चाहिए ना।
1: बिल्कुल, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, ये तो मजाक की बात थी लेकिन बहुत ध्यान से काम करना चाहिए, बच्चे भी होते हैं ध्यान से काम करना चाहिए।
0: अच्छा देखिए हम बहुत रोचक सी बातें लेकर के अपने दोस्तों की यहाँ पर शामिल कर रहे हैं
1: जी।
0: तो कुछ ना एक रोचक जानकारी मेरे पास भी है, थोड़ी सी अलग हटके है
1: जी,
0: है ना। और देखिए किताबों की लाइब्रेरी हमने हर जगह देखी है ना, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी लाइब्रेरी की बताने वाली हूँ, जानकारी देने वाली रश्मि जी और अपने दोस्तों के साथ, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। और ना इसमें रुद्रप्रयाग का जो जिला है उसका एक छोटा सा गांव है मणिगुह गांव, ये अपनी खूबसूरत वादियों के साथ साथ एक अनोखी पहचान की वजह से भी आजकल चर्चा में है।
1: भाई क्या है वो खूबसूरत बात
0: आपको बताऊं, ये ना हिमालय का पहला लाइब्रेरी विलेज है और ना यहाँ एक नहीं बल्कि गांव के अलग अलग हिस्सों में पढ़ने के लिए कई पुस्तक मंदिर बनाए गए हैं। कितना सुंदर शब्द है ना पुस्तक मंदिर, है ना, जहाँ बच्चे युवा महिलाएं और बुजुर्ग अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकते हैं।
1: भाई वाह, ये तो जगह ऐसे लग रही है कि बहुत ही खूबसूरत जगह रही है जहाँ पे भाई पहाड़ों का साथ है और पहाड़ों के साथ साथ पुस्तकों का साथ है। इस गांव की केंद्रीय लाइब्रेरी में 20,000 से अधिक किताबें हैं, इनमें साहित्य विज्ञान इतिहास बच्चों की किताबें प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें और कई भाषाओं का समृद्ध संग्रह भी शामिल है। और सबसे अच्छी बात ये है सोनाली, यहाँ किताबें पढ़ने के लिए किसी तरह का शुल्क भी नहीं लिया जाता।
0: क्या बात है, देखिए बहुत सुंदर बात है ये। और आपको पता है ना रश्मि जी कि आजकल जब हम मोबाइल की जो स्क्रीन है वो हमारा ज्यादातर समय ले लेती है,
1: बिल्कुल
0: ऐसे में जो मणिगुह गांव है ना ये याद दिलाता है कि किताबों के साथ बिताया गया थोड़ा सा समय भी हमारी सोच को नई दिशा दे सकता है ना।
1: बिल्कुल।
0: और
1: कहते हैं ना कि सोनाली जिस घर में किताबें होती हैं वहाँ विचार कभी बूढ़े नहीं होते। वाह,

0: प्रोफेसर फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में ये गीत।
1: और भाई अब एक गलती ऐसी आ चुकी है जो बता रहे हैं उग्रसेन यादव जी दिल्ली से, वो उन्होंने हमें मेल किया है भाई, वो कह रहे हैं चाय के बारे में, जब चाय पी रहे थे तब ये गलती हो गई। हाँ। और कहते हैं कि चाय पीने के लिए सोचा तो मैडम मेरी बिजी थी, तो मुझे लगा बना लेते हैं, सब पत्ती अदरक सब कुछ डाल दिया, लेकिन चीनी के बजाय क्या डाला उन्होंने पता है, नमक। तो फिर उसके बाद मैडम जी ने कहा भाई थोड़ा इंतजार कर लेते, तो ये हो जाती है भाई गलतियाँ। और कौन सी मजेदार गलती है सोनाली तुम्हारे पास?
0: अच्छा मेरे पास ना देखिए, हमारे नियमित श्रोता है सुदर्शन मुखी जी और अनिता मुखी, सिमरन मुखी है शांति नगर सोनीपत से, और इन्होंने लिखा है कि गैस पर दूध रख कर भूल जाना और फिर दूध का गिर जाना ये एक आम भूल हो जाती है, और जिससे कभी कोई भूल नहीं है हुई इसका

0: सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो हम भी आगे बढ़ते हैं अगली मेल की तरफ। ये मेल हमें आई है चौधरी वासी राजू अग्रवाल केशव, और ये कह रहे हैं कि आजकल मशीनी जमाना है, बिजली के उपकरण वगैरह का ध्यान रखना चाहिए और अपनी गाड़ी मोटर का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप कहाँ खो गए हैं साहब, हम तो मांग रहे हैं आपसे गलती आपकी की भाई क्या गलती की थी आपने।
1: अच्छा, और देखिए कितना कभी कभी अच्छा लगता है ना रश्मि जी, कि हम कुछ करने जाते हैं और वो किसी के लिए बहुत प्यार की बात और बहुत पसंद की चीज हो जाती है।

0: जमाना है, बिजली के उपकरण वगैरह का ध्यान रखना चाहिए और अपनी गाड़ी मोटर का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप कहाँ खो गए हैं साहब, हम तो मांग रहे हैं आपसे गलती आपकी कि भाई क्या गलती की
1: सच
0: थी
1: में।
0: आपने, है ना।
1: अच्छा, और देखिए कितना कभी कभी अच्छा लगता है ना रश्मि जी, कि हम कुछ करने जाते हैं और वो किसी के लिए बहुत प्यार की बात और बहुत पसंद की चीज हो जाती है। ये हुआ है हमारे लिए डी राजेश्वर राव जी के साथ में। इन्होंने ना रिक्वेस्ट की थी चुपके चुपके फिल्म का उन्हें गाना सुनना है
0: जी,
1: और देखिए संयोगवश हमने वही

0: हर नागरिक को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना भी है।
1: बिल्कुल। और ना एक चीज और बता दूं, हाँ, कि अगर आप भी, मतलब हमारे दोस्त भी, हमारे श्रोता भी जो हमें सुन रहे हैं, अगर वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं ना, तो एक इसकी वेबसाइट है जो है greendrive.delhi
0: वन महोत्सव।
1: हाँ, वन महोत्सव। तो वहाँ पर दिल्ली वन महोत्सव है, तो ये पूरा greendrive.delhivanmahotsav.in इस पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।
0: क्योंकि भाई जुलाई का महीना चल रहा है, वन महोत्सव का समय है, पौधे लगाने का समय है, तो greendrive.delhivanmahotsav.in पर जाकर पूरी जानकारी हम ले सकते हैं। बस चलते चलते एक बात कहना चाहती हूँ सोनाली, एक पौधा लगाइए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खूबसूरत बात पता है क्या है, उसे बढ़ता हुआ देखना।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: क्योंकि पौधे सिर्फ लगाए नहीं जाते, अपने पन से पाले जाते हैं।
1: देखिए, ये तो एक सिलसिला है और इस सिलसिला को बढ़ाते जाइए।

0: फिल्म सिलसिला में आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।
1: और एक सिलसिला यहाँ चल रहा है, लगातार हमें मेल्स मिल रही हैं। उमेश कुमार खयाला से कह रहे हैं, नमस्ते, जब मैंने पहली बार रसोई में सब्जी बनाई तो नमक डालना ही भूल गया। हाँ भाई, कोई चाय में नमक डाल रहा है, कोई नमक डालना भूल गया, और बहुत सारी गलतियां भी हो रही हैं। और भाई ये सुरभि हमारे साथ जुड़ गई हैं मयूर विहार से।
0: कितना क्यूट नाम है ना
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
0: और ना आपने जिस तरह से बोला ना मैप रोटी, मुझे अपना एक किस्सा याद आया। मेरे पतिदेव ने भी कोशिश की थी
1: अच्छा
0: रोटी बनाने की। हाँ। वो रोटी बहुत अच्छी अब बना लेते हैं। हाँ। लेकिन जब उन्होंने सबसे पहले बनाई थी ना तो खुद कह रहे थे कि मुझे नहीं पता मैं कौन से देश का नक्शा बनाया था, पर उन्होंने बनाया था। जी जी।
1: और नमक से जुड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं। एक बार एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गई है। वो कह रही है कि पहली बार जब खाना बनाया, सब्जी बनाई, तो नमक डालना भूल गई, जैसे उमेश जी भूल गए थे। लेकिन भाई घर वालों ने सबने बड़े प्यार से बिना कुछ कहे खाना खाया, और बाद में बोले उनके हस्बैंड कि क्या आज डाइट वाला खाना बनाया था।
0: कितना क्यूट है ये जवाब।
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन रिस्पांस बहुत प्यारा था ये वाला।
1: जी बिल्कुल।
0: और अगले ने अपनी गलती भी समझ ली।
1: हाँ।
0: और कुछ खराब भी नहीं बोला गया।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप हैं रमा। ये हमारे साथ जुड़ी हैं रोहतक से। कह रही हैं कि एक बार घर में हम दोनों की लड़ाई हो गई, पति पत्नी की, और तब मैं सब्जी बना रही थी और मेरे आंखों में आंसू आ गए और मुझसे सब्जी में मिर्च बहुत ज्यादा पड़ गई। और उसके बाद तो ये हुआ कि जिसने भी वो सब्जी खाई उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा देखिए भाई खाना कितना इमोशनल है। जी जी बिल्कुल।
0: ये बहुत अच्छी चीज है, इमोशनल खाना।
1: इमोशनल क्योंकि हम जुड़े रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं तो जुड़ती है ना, श्रोताओं के साथ भी जुड़ी हुई है, और जो खाना बनाता है उसकी भावनाएं तो भाई घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ जुड़ी रहती है ना। उनके लिए तो वो पलके जो है ना बिछाते हैं। बिल्कुल है ना,
0: पलक पावड़े बिछाते हैं और खूब तरह से प्यार अपना शो करते हैं,
1: है ना। तो पलकों की झालर जो बुनते हैं घर वालों के लिए बुनते हैं ना, और हम अपने श्रोताओं के लिए।

0: फिल्म हर जाए में हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।
1: और सोनाली भाई, हम आते हैं जाते हैं कहीं भी, लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा बनी रहे, वो सुरक्षित रहें आते जाते। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये केवल कानून या पुलिस की नहीं है, बल्कि हम तो ये कहेंगे उसकी खुद की और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। क्या कहती हो तुम?
0: बिल्कुल सही आपने बात कही जी। क्योंकि देखिए, बच्चों को बचपन से, विशेषकर लड़कियों को, है ना, इसके बारे में जरूर सिखाना चाहिए। और सुरक्षित समाज की शुरुआत घर से होती है,
1: बिल्कुल,
0: जहाँ बेटियों के साथ साथ बेटों को भी सम्मान, संवेदनशीलता और समानता के संस्कार दिए जाने चाहिए।
1: बिल्कुल। और सोनाली, सुरक्षा का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा से नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण भी है जहाँ डर, हर महिला बिना डर के अपनी बात कह सके, पढ़ सके, काम कर सके, यात्रा कर सके,
0: बिल्कुल सही,
1: और अपने सपनों को पूरा कर सके।
0: बिल्कुल। और इसी कहते हैं कि जहाँ पर एक जिम्मेदार नागरिक होगा तो समाज भी उतना ही जिम्मेदार बनेगा, और तभी हमें उचित सहायता और कानून का साथ देना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल। भाई, अगर किसी महिला के साथ आप अन्याय होता देखें या दुर्व्यवहार होता देखें तो आप चुप ना रहें, है ना, और कानून का साथ दें, और छोटी सी जागरूकता, समय पर की गई मदद और आपका संवेदनशील व्यवहार किसी का जीवन बदल सकता है। तो हम क्या कहोगी चलते चलते?
0: बस यही कहूंगी कि महिला सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जी सके, इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। और महिलाएं सुरक्षित होंगी तभी परिवार मजबूत होगा, समाज आगे बढ़ेगा
1: और देश सशक्त होगा।

0: और हमारे साथ राजेश राजी कह रहे हैं कि भाई एक बार मैंने खिचड़ी बनाई और वो बिल्कुल ख़राब हो गई, तो मैं अच्छे से तैयारी करके नहीं गया, ऐसा वो कह रहे हैं, गलती
1: है। देखिए, आपने गौरी शंकर जी से कहा था ना कि आपने कुछ गलती बताइए, है ना, तो हमें मेल कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि उनसे चाय बनाते हुए करीब 20 साल हो गए हैं, शुरू में तो खराब बनी थी, बाद में आदत पड़ गई और अब उनकी घरवाली कहती है चाय आप ही बनाया करो क्योंकि उनकी जैसी अच्छी चाय कोई और नहीं बनाता।
0: और महावीर कॉलोनी सोनीपत से संजय कुमार जी कह रहे हैं कि सब्जी बनाते हुए सब्जी में नमक तेज हो गया और मैंने सब्जी में फिर चीनी मिलाई ताकि बैलेंस। भाई वाह, ये तो कुछ गुजराती मतलब डिश बन गई है ना, व्यंजन बन गया है ना। तो हम कहेंगे अकेले अकेले मत जाइए, थोड़ा सा पत्नी से पूछ कर काम कीजिए, अच्छा रहेगा।
1: और इसी के साथ ना हम अपने दोस्तों को ये भी बता दें कि बहुत बार ये होता है कि हम सब हंसी मजाक में बातें तो करते रहते हैं लेकिन हमें एक चीज का हमेशा ध्यान देना चाहिए।

0: ये तो कुछ गुजराती मतलब डिश बन गई है ना, व्यंजन बन गया है ना। तो हम कहेंगे अकेले अकेले मत जाइए, थोड़ा सा पत्नी से पूछ कर काम कीजिए, अच्छा रहेगा।
1: और इसी के साथ ना हम अपने दोस्तों को ये भी बता दें कि बहुत बार ये होता है कि हम सब हंसी मजाक में बातें तो करते रहते हैं, लेकिन हमें एक चीज का हमेशा ध्यान देना चाहिए, वो होता है कि हमारी जिंदगी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है ना, वो मोबाइल फोन में सिमट गया है। बैंक खाते से लेकर के यूपीआई हो गया, ईमेल हो गया, सोशल मीडिया, तस्वीरें, और हमारे

0: देखिए जाना तो हमारी बनता ही है, जिम्मेदारी भी बन जाती है,
1: क्योंकि समय कह रहा है कि समय हो चुका है, जाइए कल फिर आने के लिए।
0: बिल्कुल कल फिर आने के लिए। तो बस इस कार्यक्रम यानी घर आंगन से मुझे सोनाली
1: और रश्मि कुकरेती को दीजिए विदा। नमस्कार, नमस्कार।

हर आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया

0: एशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
0: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे

0: भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रवींद्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिंतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian president in Jakarta, Mr. Modi said growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration.
2: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology.

0: 63 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 1:10 हुए हैं, वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम एक ही फिल्म में आप सभी सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का स्वागत। खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कार्यक्रम है एक ही फिल्म से और आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम है, तो भाई आज इस कार्यक्रम में फिल्म भी ऐसी ही हम आपके लिए चुनकर लाए हैं। तो घड़ी की सुइयों को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, साल होगा सन 1990। जी हाँ दोस्तों, जब थिएटर के बाहर लगी थी लंबी लंबी लाइनें और हर ऑटो, हर दुकान, हर रेडियो पे, हर घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही धुन गूंज रही थी और वो गूंज थी इसी फिल्म के गीत, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए। जी हाँ दोस्तों, पहचान गए होंगे ना आप बिल्कुल इस गाने को सुनकर। जी हाँ दोस्तों, आज आप सभी के लिए चुनकर लेकर आए हैं डायरेक्टर इंद्र कुमार की उस यादगार फिल्म को, जिसने रोमांस कॉमेडी ड्रामे से एक नई परिभाषा लिखी, फिल्म दिल। 36 फिल्म फेयर पुरस्कारों में दिल को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 8 नॉमिनेशन इस फिल्म को मिले। और यही वो फिल्म जिसके लिए माधुरी दीक्षित ने जीता अपनी लाइफ का सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का वो पुरस्कार जिसकी हर कोई अभिलाषा रखता है। और दोस्तों इस फिल्म को तेलुगु में भी बनाया गया 1993 में थोलुमुद्दु के नाम से, और इस फिल्म को कन्नड़ में भी बनाया गया शिवरंजनी के नाम से। और ये जिस भी भाषा में ये फिल्म बनी है, हर भाषा में इस फिल्म ने कुछ कमाल ही कर दिखाया है। तो दोस्तों आज का सफर फिल्म दिल के नाम, तो करते हैं शुरुआत अनुराधा पौडवाल की प्यारी सी आवाज में इस खूबसूरत से गीत के साथ। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

बिल्कुल यादों में तो खो गया होगा आपका भी दिल, क्योंकि इस फिल्म की कहानी जितनी दिलचस्प थी उतने ही मजेदार थे इस फिल्म के किरदार। राजा यानी कि हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और मधु यानी कि धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, कॉलेज की नोकझोंक, वो तकरार और फिर धीरे धीरे उस नफरत का प्यार में बदल जाना। अनुपम खेर और सईद जाफरी की वो अमीर गरीब की टक्कर और समधी बनने का वो अनोखा ड्रामा। क्यों, आ गई ना यादें? ताजा हो गई होंगी बिल्कुल यादें। तो दोस्तों, आज हम इस पूरे सफर में उन्हीं यादों को ताजा करने वाले हैं। समीर साहब के लिखे गीत, आनंद मिलिंद के संगीत से सजे हुए इस फिल्म के खूबसूरत गीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

के बीच में जो भी टकराव हुए या संधि बनने वाले जो सीन्स रहे हैं, वो जो ड्रामा रहे हैं, वो एकदम से नेक्स्ट लेवल रहे, एकदम अलग टाइप के रहे हैं। और वाकई में जब भी वो लोग स्क्रीन पे आते थे ना, गुस्सा भी आता था लेकिन हंसी भी ज़रूर आती थी। और शायद यही वजह थी कि इंद्र कुमार ने इस फिल्म में जिस तरीके से किरदारों का चयन किया, वो वाकई में काबिले तारीफ था। और जिस तरह से उन्होंने आमिर और माधुरी दीक्षित को इस फिल्म के लिए चयन किया, जिस तरह से अनुपम खेर को चुना, सई जाफरी को चुना, वाकई में, और यही वजह थी कि इन सभी ने थिएटर में आग लगा दी। और शायद यही वजह थी कि सन 1990 की सबसे ज्यादा, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी दिल।

जी दोस्तों, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। स्वन सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर, गुरलाल अविराज हमारे साथ जुड़े हैं गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन हमारे साथ जुड़े हैं नाजिया इब्राहिम के साथ, नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दादा बाहू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा हसन, नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील पाठक, कमल, गव्या मल्होत्रा, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री सुधाकर, राजे जादव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत, सानवी, कल्पना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीरगांव गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं अजित भावसर, प्रमिला भावसर जी, और लिखते हैं कि मैंने फिल्म बहुत बार देखी है और इस फिल्म का जो गीत संगीत है वो भी हमें बहुत पसंद है। जी हाँ अजीत जी, इस फिल्म का जो संगीत है वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। पोटिया कला दुख से संजय कुमार साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजित भावसर जी ने बहुत ही खूबसूरत जो जानकारी वो हम तक पहुंची आई है, लिखते हैं कि जो डांस नंबर है दम दम आदम, उसमें काम करने के लिए शुरुआत में आमिर खान ने मना कर दिया था। आमिर का मानना था कि माधुरी दीक्षित जो है वो उस समय की बेहतरीन डांसर थी और उनके सामने डांस करना कमज़ोर दिखना था, जो कि वो नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में इंद्र कुमार ने उनको राज़ी किया। तो अभी हम आपको वो गीत भी सुनवाएंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी ये खूबसूरत जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए, नरेंद्र सुतार, मनोज, हिमांशु सुतार हमारे साथ जुड़े हैं नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कपिल छीपा, पूजा परिहर के साथ, और उन्होंने भी बहुत खूबसूरत जानकारी हम तक पहुंचाई है। ज्योति मक्कर, मन्नत, भरत, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो अगला संदेश उसको भेजने वाले हैं अपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी और उनका पूरा परिवार, कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगले संदेश के साथ जुड़े हैं हमारे साथ इशाक मोहम्मद जी, चूड़ी लाइन, मुंगेली छत्तीसगढ़ से खतीजा बेगम के साथ, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद सैदाबासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अपासी।

परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जुड़े बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रांजल, समीक्षा बेबी आराध्या साहू के साथ। और ये अगला संदेश भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा जी, ग्राम ममना से, इंदिरा नगर भवरपुर से, राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हम तक पहुँचाया है और इसको पहुँचाने वाले हैं मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश है सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित का। अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, उषा मोहन टिल्लू नायक के साथ पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल रिलिस डिकेस्ट्रो जुड़े हुए हैं जनकपुरी सहारनपुर से, समडल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, राधे दीपक जी जुड़े हुए हैं और कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। बसना भवरपुर से राजू देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हैं। और दोस्तों अगला संदेश जो हमारे पास है इसको भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद जी। संदेशों की जो घड़ी है वो बहुत सारी है, लेकिन अब जो घड़ी की सुइयां वो इशारा करें कि मुझे आपसे विदा लेनी होगी। लेकिन याद रखिए, ये जो गीतों का, फिल्मों का सफर, ये जो सिलसिला है वो यूं ही चलता रहेगा। 2:30 पर एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होंगी आप सभी की प्यारी दोस्त अंजू पांडे। तो दोस्तों रेडियो यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 17ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ 5 ਟਵੰਟੀ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਨੋਟਿੰਗਹਮ ਚ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रम्बोवो सुबियांतो के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। अहम मादनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समंदरी सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए गए। वजीर आजम को जकार्ता में इंडोनेशिया के आला तरीन एजाज बिनतांग अधिपुरना से नवाजा गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाका केस में 38 मुजरिमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद के हुक्म को बरकरार रखा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरेन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफीज जारी की। जुनूब मगरबी मानसून शिमाली बहरे अरब, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के इलाकों में अगले 3 दिन के दौरान मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात इंग्लैंड के शहर नोटिंगम में तीसरे T20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ दोतरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने और दोनों मुल्कों के दरमियान जामे दिफाई शराकतदारी को नई रफ्तार देने के लिए वफ्द की सतह की बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी से मुतालिक उमूर में इश्तराक में मजीद इजाफे के मकसद से मुफाहमत नामों का तबादला भी किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे दिफाई शराकतदारी 2018 में कायम हुई थी और अब ये एक नए मरहले में दाखिल हो रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए बाहमी एतमाद से दिफा, सलामती और समंदरी शोबे में तआवुन को इस्तेहकाम मिला है और दोनों ममालिक ने दिफाई मैदान में तबादलों, कुदरती आफात से निमटने से मुतालिक तआवुन और सनअती इश्तराक को वसअत देने से इत्तेफाक किया। जनाब मोदी ने कहा कि बहुत से शोबों में ये शराकतदारी आगे बढ़ रही है जिनमें तरक्की, सलामती, टेक्नोलॉजी, सकाफत और तालीम शामिल हैं। मुस्तकबिल में दोतरफा ताल्लुकात पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया शराकतदारी में एक सुनहरी बाब का आगाज हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक अहम मादनियात और स्टील के शोबों में सप्लाई चेन को मुस्तहकम बनाने की अहमियत से मुत्तफिक हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों की कंपनियां स्टेनलेस स्टील और कमयाब जमीनी मकनातीस में नई शराकतदारी का आगाज कर रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत की UPI जल्द ही इंडोनेशिया के अदायगी के निजाम से मजबूत हो जाएगी जिससे तिजारत और सफर में दोनों में ही मजीद सहूलत हो जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि वो कल योग्यकर्ता में सदर प्रबोवो सुबियांतो से मिलेंगे और 1000 साल से भी ज्यादा कदीम परमबनन मंदिर के तहफुजाती प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। उन्होंने इस मंदिर को भारत और इंडोनेशिया की मुश्तरका सकाफती विरासत की एक अलामत करार दिया। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि दोनों ममालिक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के इंडोनेशिया के तारीखी दौरे की 7 साला तकरीबात जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। वजीर आजम ने इंडोनेशिया के पहले वजीर तालीम की हजर देवांतरा के तआवुन को याद किया और कहा कि उनका तालीमी फलसफा गुरुदेव टैगोर के

0: रियाद से गहरे तौर पर मुतासिर था।
1: हम दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहाँ के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज बितंग अदिपुरना से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें इस्ताना मर्देका में एक तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने किया। ये एजाज भारत और इंडोनेशिया के दरमियान अहम शराकत दारी को मुस्तकम करने और तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने में वज़ीर-ए-आज़म के तआवुन के एतराफ़ के तौर पर दिया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जमहूरिया इंडोनेशिया के मेडल ऑफ ऑनर बितंग अदिपुरना से नवाजा जाना सभी भारतीयों के लिए बड़े फख्र की बात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एजाज से नवाजा जाना भारत की जामे अहम शराकत दारी में गहराई लाने और भारत आसियान ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने की वजीर आजम मोदी की कोशिशों का सबूत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने आज 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में उस हुक्म को बरकरार रखा है जिसमें 38 मुजरिमीन को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद सुनाई गई थी। जस्टिस ए वाई कोकजे और समीर दवे पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने निचली अदालत के इस हुक्म के खिलाफ दायर की गई सभी अपीलों को मुस्तरद कर दिया और इस केस में दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन के अरकान को सुनाई गई सजा के हुक्म को बरकरार रखा। 26 जुलाई 2008 को 21 सिलसिलेवार बम धमाकों से 70 मिनट तक पूरा अहमदाबाद शहर लरस कर रह गया था। इन धमाकों में 56 अफराद हलाक और 200 जख्मी हुए थे। इन धमाकों में शहर के कुछ अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया था। 2022 में एक खसूसी अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के 38 अरकान को सजाए मौत सुनाई थी। अदालत ने 11 मुजरिमीन को सजाए उम्र कैद भी सुनाई थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों को का आगाज किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इस साल ड्यूरेंट कप, प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी हासिल करने के लिए नई टीमें एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगी। इस साल के टूर्नामेंट में श्रीलंका की टीम की शिरकत पर खुशी का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नई टीमों के शामिल होने से इस तारीखी मुकाबले को मजीद शोहरत हासिल होगी।
2: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: जम्मू और कश्मीर में जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यात्रियों का छठा जत्था आज सुबह सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो गया। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने इत्तला दी है कि इस काफिले में मजमूई तौर पर 8,815 यात्री शामिल हैं जो कश्मीर में वाकई पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। वस्ती चीन के हुबेई सूबे के मशरकी हिस्से में एक खतरनाक तूफान से 8 अफराद हलाक और कुछ के लापता होने की खबर है। हंगामी हालात के दौरान बंदोबस्त की सूबाई अथॉरिटी के मुताबिक कई शहरों में कल शाम तूफान बारिश हुई और तेज हवाएं चली। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने बताया है कि शिमाल मगरबी मानसून के शिमाली बहिरे अरब, गुजरात के कुछ हिस्सों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बाकी हिस्सों में अगले 3 दिन के अंदर मजीद आगे बढ़ने के हालात साजगार हैं। मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज शदीद बारिश होगी। मर्दों के क्रिकेट में आज रात नोटिंघम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर 5 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 बैन अलाक्वामी मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ वक्त की सतह की बातचीत की। अहम मादनियात, टेक्नोलॉजी, खुराक की यकीनी फराहमी, दवाओं और समंदरी सलामती समेत बहुत से मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए गए। वजीर आजम को जकार्ता में इंडोनेशिया के

आला तरीन एजाज बितंग आदिपुरना से नवाजा गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाका केस में 38 मुजरिमों को सजाए मौत और 11 को सजाए उम्र कैद के हुक्म को बरकरार रखा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ड्यूरेन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफी जारी की। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Prime Minister Modi conferred Indonesia's highest honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, in Jakarta. Gujarat High Court upholds death sentence for 38 accused and life term for 11 persons in 2008 Ahmedabad serial blast case. And southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 3 days. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ

0: 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार ते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
4: 63 हेक्टर हरित रीच

0: सारंगे, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
1: जनजाति समूहों का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज किया रही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, ताहिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 2:30:14 और ये वक्त है उस प्रोग्राम का जिसका आपको हर रोज इंतजार रहता है, प्रोग्राम एक ही कलाकार। तो पहले सुनते हैं ये संदेश, उसके बाद प्रोग्राम शुरू करते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: प्रोग्राम एक ही कलाकार में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आज मैं आपको लेकर चल रही हूं हिंदी फिल्म संगीत के उस स्वर्णिम दौर में, जहां धुनें सिर्फ बनाई नहीं जाती थी बल्कि दिलों में बस जाया करती थी। जी हां, और आज हम चुन कर लाए हैं फिल्म संगीत के एक ऐसे महान संगीतकार को, जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत का, जिन्हें शिल्पकार भी कहा जाता है, जब आप गीत सुनेंगे तो आप इन्हें पहचाने बिना रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे सितारे हैं उस दौर के, जिन्हें आज भी लोग उतना ही प्यार देते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं अनिल विश्वास की, जो कि हिंदी फिल्म संगीत के महान संगीतकार थे। भारतीय फिल्म संगीत का एक मजबूत आधार तैयार करने वालों में इनका नाम भी आता है। प्रेम से इन्हें अनिल दा भी कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक धुनों और पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा का ऐसा सुंदर मेल इन्होंने तैयार किया, जो आगे चलकर हिंदी फिल्म संगीत की दिशा को ही उसने बदल दिया। सुनते हैं सबसे पहले एक खूबसूरत सा गीत इनके ही संगीतबद्ध किया हुआ।

7 जुलाई 1914 बारी साल जो कि अब बांग्लादेश में है, जहां जन्म हुआ अनिल दा का। बचपन से ही संगीत का गहरा लगाव था, वो तबला बजाने में भी निपुण थे। जब बड़े हुए तो स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े और यहां तक कि वो जेल भी गए। बाद में कोलकाता पहुंचे और उसके बाद मुंबई, पहले नाम था बंबई, और यहां आकर फिल्म संगीत में अपना सफर इन्होंने शुरू किया।

अनिल दास से पहले फिल्मों में संगीत अपेक्षाकृत सरल हुआ करता था, लेकिन उन्होंने बड़े ऑर्केस्ट्रा, मधुर काउंटर मेलोडी और शास्त्रीय संगीत का ऐसा समावेश किया कि फिल्मी संगीत का स्तर ही बदल गया। यही वजह है कि उन्हें हिंदी फिल्म संगीत के आधुनिक युग का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने अनेक नए कलाकारों को भी मौका दिया। कहा जाता है कि मुकेश के करियर को पहली पहचान दिलवाने में अनिल दा का ही महत्वपूर्ण योगदान था। फिल्म पहली नजर का गीत दिल जलता है तो जलने दे, ये गीत आज भी अमर है। कुछ ही देर में इस गीत को भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसके पहले हमने लिया है फिल्म किस्मत से अगला गीत, जो कि 1943 में आई थी। इस गीत को ब्रिटिश सेंसर से बचाने के लिए चतुराई से लिखा गया था, लेकिन जनता ने इसके भीतर छिपे देशभक्ति के संदेश को तुरंत पहचान लिया। सिनेमाघरों में इस गीत पर तालियों की गूंज देर तक सुनाई देती थी।

दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। देशभक्ति का ऐसा जज्बा कि आज भी इस गीत को सुनते हैं तो वही जो जज्बा था वो फिर से उभर आता है। उसके बाद आया 1950 का दशक। अनिल दा ने दर्द, प्रेम और मधुरता को सुरों में ढाल दिया। फिल्म आरजू का ये गीत आज भी दिलों को छू लेता है, ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल। इसके बाद कई सारी फिल्में आईं। तराना आई जिसमें दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी थी और संगीत ऐसा था कि आज भी उसकी मिठास बरकरार है। सुनते हैं ये तलत महमूद साहब की आवाज़ में आरजू फिल्म का ये गीत।

अनिल विश्वास कलाकारों से घंटों रियाज करवाते थे। उनका कहना था कि यदि शब्दों का भाव आवाज में नहीं उतरा तो धुन अधूरी रह जाएगी। उन्होंने एक युवा गायक पर भरोसा किया जिसकी आवाज में दर्द था, मिठास थी और अपनापन था। ये गायक आगे चलकर भारतीय संगीत का बड़ा सितारा बना। जी हाँ, मुकेश इनका नाम था और आपने कई सारे गीत इनके सुने हैं और आपकी फेवरेट लिस्ट में भी कई सारे गीत इनके हैं। अनिल दा का जो संगीत था वो कभी शोर नहीं करता था, वो धीरे धीरे मन में उतरता था और यही कारण है कि उनके गीत आज भी उतने ही ताजा लगते हैं।

अनिल दास सिर्फ संगीतकार ही नहीं थे, वे खुद भी बहुत अच्छे गायक थे। फिल्म रोटी जो कि 1942 में रिलीज हुई थी, उसमें उन्होंने गाना गाया था कौशल्या कंदन राम। और फिल्म ज्वार भाटा जो कि 1944 में आई थी, जिसमें दिलीप कुमार ने डेब्यू किया था, यहाँ पर भी उन्होंने एक गाना गाया था। उनको संगीत के पारखी बड़े चाप से सुनते थे। अनिल विश्वास की पत्नी और मशहूर गायिका मीना कपूर की आवाज़ में भी गाने गाए हुए हैं। हम आपको सुनवाते हैं अगला जो गीत हमने लिया है, चार दिल चार रहे, और आवाज़ है अनिल कुमार, अनिल विश्वास की पत्नी मीना कपूर की।

दोस्तों, फिल्मी दुनिया से 1960 के दशक में जब फिल्म संगीत का मिजाज बदलने लगा था तो वो कुछ निराश हो गए थे। वो दिल्ली आ गए और ऑल इंडिया रेडियो के नेशनल ऑर्केस्ट्रा के डायरेक्टर बन गए। बाद में उन्होंने दूरदर्शन के मशहूर धारावाहिक हम लोग, जो कि 1984 में आया था, इसका टाइटल म्यूजिक भी तैयार किया। 31 मई 2003 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंचे हैं, वक्त है कि उन संदेशों को भी हम शामिल कर लें। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया और शेख रही मुन्ना जी हमारे साथ हैं। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा जी दादा बाबू रोड गिरीह झारखंड से जुड़े हुए हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत राजदीप गाँव लोहगढ़ ठाकुरवाला से हमारे साथ हैं। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं। और सहारनपुर से सैयद मसरून हमारे साथ हैं। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेरी से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर रमेश कुमार खत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश हमारे पास है वो छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल का आया हुआ है। संदीप मक्कर ज्योति जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं। संबलपुर कांकेर से फागुन राम, ज्योति ओजस्वी जी हमारे साथ हैं। और अगला जो संदेश है ये हमारे पास पहुँचा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल पूजा परिहार का। और अजीत भापसर जी ढेर सारी जानकारी के साथ, प्रमिला जी के साथ वीरन गांव गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिरमिरी कोरासिया कालडी से इंद्रवान सिंह, अनुभव ऋषभ साव, राम सहोदर जी हैं। और गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, अशोक कुमार सहगल शालीमार बाग से, तुलसी मस्किन बीना जी गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु जी जुड़े हुए हैं। कवि रेडियो श्रोता संघ

लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, जयदेव तुषार डॉली बेबी पूजा जी हमारे साथ हैं, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन ट्रिकेस्टो रोजी पर्ल जी हमारे साथ हैं, पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से निर्मोहन उषा मोहन चिलू नायक मधु नायक जी हमारे साथ हैं, रविंद्र मोहन और किशनगंज बिहार से आशा देवी के साथ जुड़े हुए हैं, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्किन जी हैं, पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी जुड़े हुए हैं, संजय डिंगिया नमन अपार डिंगिया बागपत उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, गुन्नौर से आदिल कमर तख्तीत और अली मुजफ्फर अली जी जुड़े हुए हैं, फारूक अली जी का भी संदेश हम तक पहुँचा है और ये संदेश सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का हम ढेर सारा धन्यवाद करते हैं कि आप इस सफ़र में हमारे हम सफ़र बने हैं, और अगर कुछ नाम रह गए हों तो हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है।

अनिल दा भले ही इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी धुनें आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित है। भारतीय फिल्म संगीत पर उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। इस महान संगीतकार को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। अगले मुलाकात में फिर एक नए सितारे के साथ उपस्थित होंगे। तब तक अपने दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज का। दोस्तों, अगर हम ब्लैक एंड वाइट की बात करें या शुरुआती कलर सिनेमा के उस दौर की बात करें जब बॉलीवुड का गोल्डन एरा यानी कि सुनहरा दौर जिसे हम कहते हैं वो शुरू हुआ, 50 और 60 के दशक का वो वक्त जब फिल्मों में गाने का और गानों में डांस का एक अलग ही जादू था और इस जादू को पर्दे पर बिखेरने वाली थी हमारी डांसिंग क्वींस। तो आज का जो हमारा ये मैटिनी मेलोडी कार्यक्रम है वो समर्पित है उन्हीं डांसिंग क्वींस के लिए, उन्हीं सदाबहार अभिनेत्रियों या कहें कि नृत्यों को जिन्होंने अपने कदमों की थाप पर पूरे देश को किया मजबूर थिरकने पर। और कोई भी कैसे भी बैठा है और वो ये गाने सुने तो वाकई में नाचने को मजबूर हो जाता है। तो चलिए करते हैं इस सफर की शुरुआत।

जादू को पर्दे पर बिखेरने वाली थी हमारी डांसिंग क्वींस। तो आज का जो हमारा ये मैटिनी मेलोडी कार्यक्रम है वो समर्पित है उन्हीं डांसिंग क्वींस के लिए, उन्हीं सदाबहार अभिनेत्रियों या कहें कि नृत्यों को जिन्होंने अपने कदमों की थाप पर पूरे देश को किया मजबूर थिरकने पर। और कोई भी कैसे भी बैठा है और वो ये गाने सुने तो वाकई में नाचने को मजबूर हो जाता है। तो चलिए करते हैं सफर की शुरुआत।

अभी दोस्तों हमने बात की कुकू के बारे में, लेकिन अभी हम बात करेंगे 13 साल की उस मासूम सी लड़की के बारे में जिसने कोरस डांसर के रूप में पहली बार मौका मिला और वो आगे चलकर बनी बॉलीवुड की अल्टीमेट चाचाचा और कैबरे क्वीन, यानी कि हेलेन। जी हाँ दोस्तों, हेलेन जो कि 50 से 60 के दशक में स्टाइल, ग्रेस और वेस्टर्न डांस की एक परिभाषा बन गई थी। यानी कि अगर कहीं पर भी वेस्टर्न डांस या स्टाइल की बात हो या ग्रेस की बात हो तो हेलेन का नाम सबसे पहले आता। जब वो विदेशी अंदाज में थिरकती थी तो सिनेमा हॉल में उनके लिए तालियां गूंज उठती थी। 1958 के

0: Mera naam ching ching chu, ching ching chu, baba ching ching chu. Raat chandni mein aur tu, hello Mr. How do you do?
1: जी दोस्तों, हेलन, हेलन का नाम आता है तो भाई हमारे पैर जो हैं वो अपने आप ही एकदम थिरकने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात है, जहां पर एक तरफ वेस्टर्न और कैबरे डांस का जादू था, वहीं दूसरी तरफ जादू था क्लासिकल डांस का। और क्लासिकल डांस को हिंदी सिनेमा की जो मेन हीरोइनें थीं उन्होंने सबसे बड़ा हथियार बनाया। और इस हथियार को बहुत ही अच्छे से यूज़ करने वाली जो क्वीन थी वो थी साउथ से आई, पूरे भारत पर छाने वाली वैजयंती माला। वैजयंती माला सिर्फ एक बेहतरीन डांसर ही नहीं बल्कि बेहतरीन अदाकारा भी थी। और अगर हम बात करें उनके डांसिंग टेक्निक की तो भरतनाट्यम की तो वो उस्ताद थी। और शायद यही वजह थी कि 1954 में नागिन, 1958 में मधुमती और 1964 में संगम जैसी फिल्मों में जो उन्होंने डांस किया है उससे हीरोइनों के लिए डांसिंग स्किल्स को एक नया बेंचमार्क बना दिया। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा प्यारा सा ऐतिहासिक संगीत, जिसको सुनकर मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी नाचने पर मजबूर हो जाएंगे।

जी दोस्तों, आपने सुना अभी ये खूबसूरत सी जंजीर फिल्म से हम बात कर रहे हैं हमारी डांसिंग क्वींस के बारे में, और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। श्री सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित वयाल, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत, सानवी, कल्पना देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हुए शांतिनगर सोनीपत से। नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पहादा पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश हम तक आया है और इसको पहुंचाने वाले हैं डीबी राणा, नेहरू विहार, दिल्ली से। अगला संदेश आया है वीरगांव गुजरात से अजित भावसर, प्रमिला भावसर जी का, और लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम में कुकू हेलन जैसी अन्य पुरानी डांसर अभिनेत्रियों पर प्रोग्राम चल रहा है, गाने अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपरकोट मोहल्ला चौकटी बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवास, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजित भावसर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक अच्छी लंबी सारी रिसर्च करके लिस्ट भेजी है, हेलेन, अरुणा ईरानी, बिंदु, जयश्रीटी, फरियाल, कुकू जैसी जो स्पेशल प्रमुख डांसर थी उनके बारे में उन्होंने लिखा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी खूबसूरत जानकारी के लिए। सुदर्शन मुखी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से, और ये थे दोस्तों वो संदेश जिनके जरिए हमारे सभी श्रोता हम तक जुड़े कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज में। हम बात कर रहे हैं डांसिंग क्वींस के बारे में। 60s 70s के दशक में अगर हम बात करें डांसिंग क्वीन के सफर की, तो हेलन का

पैमाना होता था कि ये फिल्म हिट जाएगी। तो दोस्तों, अरुणा ईरानी जी के ही एक खूबसूरत से गीत के साथ, एक खूबसूरत से डांसिंग नंबर के साथ, अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस खूबसूरत से कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज की समाप्ति की। छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए खूबसूरत सा गीत कारवां फिल्म से लता जी की आवाज़ में। इसी के साथ अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 3:30 हुए हैं, वक्त हुआ है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 4 बजने को है आपसे कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।

印度德里广播电台听众朋友们，现在我们报告新闻：莫迪总理在雅加达与印尼总统普拉博沃肃邦脱臼。

प्रस्तुत लोकगीत रमेश जोशी की आवाज में नायक अपनी नायिका की सुंदरता को हास्य और विनोद रूप में व्यक्त कर रहा है। छपेली स्वरूप का यह गीत जिसमें नायिका के पैरों की पायल, नाक में नथुली, लंबी चुटिया, चंचल चितवन नयन और बुरांश जैसे लाल चेहरे का बखान है। तकिया कलाम और रिदम को तीव्रता देने के लिए कहा गया है, क्या राम्रो घम लागू छो, यानी नेपाली भाषा में क्या मधुर धूप खिली।

0: 听众朋友们，接下来我们播送麦希巴辛格梅达唱的一首民间歌曲。
1: एक नायक अपनी नायिका से दूर हो तो स्वाभाविक है कि उसके मन में नायिका का चेहरा आता रहता है। प्रस्तुत गीत इसी विरह की श्रृंगारिक अभिव्यक्ति है। नायिका से दूर वह उसे अपनी कल्पनाओं में याद कर रहा है। उसका मोहिल चेहरा, काजल से भरी आंखें नायक को भाव विभोर कर रही हैं। वह मन ही मन अपनी प्रेयसी से कहता है।

0: कार्यक्रम खेल खिलाड़ी
1: खेलों का आईना।
2: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी
3: प्रतीक आनंद।
2: और प्रतीक, आज हमारे पास है ढेर सारी खबरें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप से। और फीफा वर्ल्ड कप में जिस तरह से मुकाबले अब शुरू होने वाले हैं क्वार्टर फाइनल्स के, लेकिन उससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल्स के कई मुकाबले ऐसे थे जिसमें जोरदार टक्कर हुई और जोरदार टक्कर होने की संभावना भी है क्योंकि आज भी मुकाबले हैं और आज प्री क्वार्टर फाइनल्स के लास्ट मुकाबले हैं, उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले होंगे। और प्रतीक, अभी तक जो फीफा वर्ल्ड कप की सूरत हाल है वो ये है कि जो टीम अच्छा खेल रही है वो जीत रही है।
3: जी बिल्कुल,
2: और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक खास आपके लिए रिपोर्ट बनाई है, आइए सुनते हैं।

आइए सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल के महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 की, जहां कल देर रात टेक्सास के डेलस स्टेडियम में खेले गए पहले नॉकआउट मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर अगले राउंड यानी विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इसी के साथ पुर्तगाल का विश्व कप में सफर समाप्त हो गया। साथ ही साथ रोनाल्डो का भी

इस विश्व कप में सफर समाप्त हो गया। मुकाबले की बात करें तो शुरुआत से ही रोमांचक रहा। शुरू में ही दोनों टीमें गोल दाग अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से खेल रही थी, मगर दोनों टीमों के गोलकीपर ने यह ठान रखा था कि फुटबॉल को गोल नेट से टच नहीं होने देंगे। मुकाबला आक्रामक के साथ साथ रक्षात्मक भी रहा। दोनों गोलकीपरों ने अच्छे बचाव किए। हाफ टाइम तक स्कोर 0-0 रहा और इसकी सबसे बड़ी वजह स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन और पुर्तगाल के गोलकीपर डिएगो कोस्टा रहे। हाफ टाइम तक दोनों टीमों ने कुल 7 शॉट टारगेट पर मारे। स्पेन के स्टार खिलाड़ी लमीन यमाल ने भी कुछ शॉट मारे, मगर पुर्तगाली डिफेंडर नूनो मेंडेज ने उन्हें ज्यादा कुछ करने नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी जुझारू खेल खेलते दिखे। दोनों टीमों के बीच नॉकआउट स्टेज का दबाव दिख रहा था। स्पेन ने थोड़ा ज्यादा आक्रामक खेल दिखाते हुए कुल 8 शॉट मारे। इसके बाद अगले हाफ में मुकाबला और भी रक्षात्मक हो गया। दोनों टीमें डिफेंस पर खेलने लगी और कुछ छोटे मोटे मौके ही बना सकी। 73वें मिनट में स्पेन के लमीन यमाल ने एक शानदार फ्री किक ली और पुर्तगाल के गोलकीपर डिएगो कोस्टा ने एक हैरत अंगेज बचाव किया। 77वें मिनट में पुर्तगाल के ब्रूनो फर्नांडिस ने एक टाइट एंगल से शॉट लिया जो साइड नेटिंग में जा लगा। इसके बाद 85वें मिनट में स्पेन के मैनेजर डी ला फुएंटा ने एक सब्स्टिट्यूट चेंज किया और डेनी ओल्मो को मैदान से उतारकर उन्होंने मिकेल मरीनो को मैदान में भेजा। और जिस वक्त लग रहा था कि यह मैच अतिरिक्त समय में जा रहा है, तभी 90+1 मिनट में स्पेन को एक फ्री किक मिली और स्पेन ने जल्दी से फ्री किक लेते हुए एक और मौका बनाया, जब फेरान टोरेस ने एक खूबसूरत थ्रू बॉल मिकेल मरीनो के लिए निकाली और मिकेल मरीनो ने एक शानदार फिनिश की। उन्होंने गोलकीपर को छक्का आते हुए बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में बॉल को भेज दिया। इसी के साथ स्कोर 1-0 हो गया। 6 मिनट के अतिरिक्त समय में पुर्तगाल कोशिश करती रही, मगर बराबरी का गोल नहीं आया और रेफरी की अंतिम सीटी बजते ही स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अब स्पेन का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से होगा। स्पेन ने अब तक एक भी गोल नहीं खाया है। श्रोताओं, इसी के साथ रोनाल्डो का विश्व कप जीतने का सपना इस बार भी छूट गया। लगातार 6 विश्व कप में शिरकत करने वाले और लगातार 6 विश्व कप में गोल दागने वाले रोनाल्डो का यह आखिरी विश्व कप माना जा रहा था। पुर्तगाल की हार ने करोड़ों पुर्तगाली समर्थकों और रोनाल्डो समर्थकों के दिलों को तोड़ा है। बात करें रोनाल्डो की तो उन्होंने पुर्तगाल के लिए कुल 232 मैचों में 146 गोल किए हैं, साथ ही कुल 976 करियर गोल्स भी दागे हैं। चलिए अब बात करते हैं कल के दूसरे मुकाबले की, जहां वॉशिंगटन के सिएटल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बेल्जियम ने मेजबान यूएसए को 4-1 से करारी शिकस्त देते हुए उन्हें विश्व कप से बाहर कर दिया। मैच की शुरुआत धमाकेदार रही। मैच के पहले ही मिनट में बेल्जियम के तिमोथी कैस्टेनिया ने एक कर्लिंग शॉट गोल की दिशा में मारा, जिसका विरोधी गोलकीपर मैट फ्रीज ने अपनी दाई तरफ कूद कर बचाव किया। इसके बाद 9वें मिनट में बेल्जियम के मिडफील्डर निकोलस रस्किन ने एक शॉट गोलकीपर के 6 यार्ड दायरे में डाला, जो डिफ्लेक्शन के कारण बेल्जियम के युवा स्ट्राइकर चार्ल्स डी कैटेलेयर के पास आ पहुंचा और उन्होंने एक आसान टैप इन गोल कर बेल्जियम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद 31वें मिनट में एक फाउल के चलते यूएसए को पेनल्टी बॉक्स के सामने एक फ्री किक प्राप्त हुई, जिस पर यूएसए के मिडफील्डर मलिक टीलमैन ने एक दंदनाता शॉट मारा जो बेल्जियम के डिफेंडर हांस वानकन के सिर से लग डिफ्लेक्ट होते हुए गोल में जा पहुंचा और मैच को 1-1 से बराबर कर दिया। क्योंकि टिलमन का शॉट ऑन टारगेट था, इसलिए गोल उनके खाते में जोड़ा गया। बराबरी किए कुछ समय ही हुआ था कि 33वें मिनट में बेल्जियम के मिडफील्डर लियांड्रो ट्रोसार्ड ने यूएसए डिफेंडर सर्जिनो डेस्ट को छकाते हुए एक कर्लिंग क्रॉस 6 यार्ड दायरे में डाला, जहां फिर एक बार चार्ल्स डी कैटेलेयर ने हेड मारकर बॉल को नेट में पहुंचाया। उन्होंने यूएस डिफेंडर से ऊंचा उछलकर बॉल को टॉप राइट कॉर्नर में डाल दिया। इसके बाद यूएस ज्यादा मौके नहीं बना पाई और हाफ टाइम तक स्कोर 2-1 रहा। इसके बाद मैच के अगले हाफ में भी पहले हाफ की तरह बेल्जियम ने शुरू से मौके बनाए और 57वें मिनट में मैट फ्रीज की पेनल्टी बॉक्स से बाहर आकर बॉल कंट्रोल करने की गलती का यूएसए को खामियाजा भुगतना पड़ा, जब बॉल उनसे डिस्पोजेस होकर बेल्जियम के मिडफील्डर हांस वानकन के पास पहुंच गई और उन्होंने फर्स्ट टच पर दूरी से एक शानदार कंट्रोल्ड शॉट मारा, जो कि यूएस गोलकीपर और डिफेंडर दोनों के बगल से घूमते हुए खाली गोल में जा बसा। यूएस डिफेंडर टिम रीम के पैर का महीन सा हिस्सा बॉल को पूरी तरह क्लियर नहीं कर पाया और बेल्जियम ने अपनी बढ़त को दुगना कर दिया और यहां से लगभग यूएस का विश्व कप का सफर समाप्त हो गया था। लेकिन इसके बाद यूएस के पास दो बड़े मौके आए। 78वें मिनट में यूएस के मिडफील्डर सेबेस्टियन बाहर हाल्टर का हाफ वॉली शॉट दाहिने पोस्ट से टकरा गया और गोल से चूक गया।

0: के बाद 82वें मिनट में विवादित फैसला दिए जाने के बाद खेल रहे यूएस फॉरवर्ड पोलरिन बालोगुन के लिए एक शानदार थ्रू बॉल निकाली गई, जिसे उन्होंने ऑन टारगेट शॉट में बदला, मगर बेल्जियम के गोलकीपर थियबू कोर्टुआ ने उसे अपने दाहिने हाथ से बचा लिया। इसके बाद अतिरिक्त समय में फिर एक बार यूएस डिफेंडर की गलती के कारण बॉल यूएस के पेनल्टी बॉक्स में बेल्जियम के सर्वाधिक गोल स्कोरर रोमेलू लुकाकू के पास जा पहुंची और उन्होंने दाहिने पैर से एक शानदार कंट्रोल शॉट मारकर बेल्जियम का चौथा गोल कर दिया। यह बेल्जियम के लिए लुकाकू का 93वां गोल था।
1: आइए अब नजर डालते हैं आज खेले जाने वाले नॉकआउट मुकाबलों पर, जहां पहले मुकाबले में गत विजेता अर्जेंटीना के सामने होगी इजिप्ट की चुनौती। यह मैच भारतीय समय मानक अनुसार रात 9:30 से जॉर्जिया के अटलांटा स्टेडियम में खेला जाएगा। एक तरफ होंगे लियोनेल मेसी, वहीं दूसरी तरफ रहेंगे मोहम्मद सलाह। दोनों ही टीमें अपने अपने नॉकआउट मुकाबलों में 120 मिनट के कड़े संघर्ष के बाद यहां पहुंची हैं। अर्जेंटीना की बात करें तो ग्रुप स्टेज में अजेय रहने के बाद राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना को केप वर्डे ने कड़ी टक्कर दी। मेसी की कप्तानी में टीम ने अतिरिक्त समय में एक आत्मघाती गोल की मदद से बमुश्किल 3-2 से जीत दर्ज की। आज भी सबकी निगाहें अर्जेंटीना के मेसी पर रहेंगी, जो अब तक इस विश्व कप में 7 गोल मार चुके हैं। मेसी के मैजिक के साथ साथ लुतारो मार्टिनेज की फिनिशिंग पर भी अर्जेंटीना की जीत निर्भर करेगी। वहीं बात करें मिश्र की, तो टीम अपने राउंड ऑफ 32 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निर्धारित समय में 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से ऐतिहासिक जीत हासिल कर पहली बार नॉकआउट के इस चरण में पहुंची है। आज उनकी रणनीति रहेगी कि डिफेंस ब्लॉक बनाकर अर्जेंटीना को रोकें और काउंटर अटैक में मोहम्मद सलाह और ओमार मार्मोश की रफ्तार का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं आज के दूसरे और आखिरी राउंड ऑफ 16 मुकाबले की, जहां स्विट्जरलैंड और कोलंबिया की टीमें आमने सामने होंगी। यह मैच भारतीय समय मानक अनुसार मध्य रात्रि में 1:30 से कनाडा के वैंकूवर स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही हैं, जिससे यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो ग्रुप बी में कतर से ड्रॉ के बाद बोस्निया और कनाडा को हराकर टीम नॉकआउट में पहुंची। राउंड ऑफ 32 में उन्होंने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अपनी शानदार फॉर्म का परिचय दिया। कोच मुरत याकिन की इस टीम के लिए 20 वर्षीय युवा स्टार जोहान मोजाम्बी इस विश्व कप की सबसे बड़ी खोज साबित हुए हैं। उन्होंने अब तक 3 गोल और 2 असिस्ट किए हैं। अनुभवी कप्तान ग्रेनिट जाका और रीमो फाइलोर मिडफील्ड को नियंत्रित करेंगे, जबकि ब्रिल एम्बोरली आक्रमण की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें कोलंबिया की, तो ग्रुप स्टेज में उज्बेकिस्तान और डीआर कांगो को हराकर और पुर्तगाल के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद कोलंबिया ने राउंड ऑफ 32 में घाना को 1-0 से मात दी। नेस्टर लोरेंजो की टीम की सबसे बड़ी ताकत उनका डिफेंस रहा है, जिन्होंने अब तक प्रतियोगिता में महज 1 गोल खाया है। अटैक में स्टार खिलाड़ी लुइस डियाज अपनी गति से परेशान करना चाहेंगे, जबकि 2014 के गोल्डन बूट विजेता जेम्स रोड्रिगेज खेल को दिशा देंगे। इस मैच के विजेता का सामना अर्जेंटीना या मिस्र के साथ क्वार्टर फाइनल में होगा। इस मैच के बाद विश्व कप में 8 टीमें रह जाएंगी।

0: फीफा वर्ल्ड कप के बाद अब बात करते हैं एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट की, और क्या खास है ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इस बार, ये बताएंगे हमारे युवा साथी प्रतीक आनंद।
1: जी बिल्कुल, 25 जुलाई से शुरू हो रहे दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से एक और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप के 135वें संस्करण की आज राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा ड्यूरेंट कप की ट्रॉफियों का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ड्यूरेंट कप की विजेता टीम को

0: ट्रॉफी दी जाती हैं। पहली ट्रॉफी का नाम प्रेसिडेंट्स कप बोला जाता है। इसे पहली बार भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये ट्रॉफी विजेता टीम को स्थायी रूप से दी जाती है। दूसरी ट्रॉफी का नाम शिमला ट्रॉफी होता है। ये ट्रॉफी डूरंड कप के ऐतिहासिक विरासत, शिमला के स्थानीय लोगों के योगदान और भारतीय फुटबॉल की शुरुआती पहचान का प्रतीक है। तीसरी ट्रॉफी का नाम होता है डूरंड कप, जो वर्तमान डूरंड कप 1888 विंटेज का है। ये एक रोलिंग ट्रॉफी है जो विजेता टीम को एक वर्ष के लिए दी जाती है। इस बार डूरंड कप 25 जुलाई से 23 अगस्त के बीच खेला जाएगा, जिसमें 5 मेजबान शहर होंगे, जिनमें रांची पहली बार एक मेजबान शहर है। फॉर्मेट की बात करें तो 24 टीमें होंगी जो 6 ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगी, और प्राइस पूल की बात करें तो 3 करोड़ का प्राइस तय किया गया है।
1: भारतीय फुटबॉल के लिए एक बहुत ही शानदार पल, क्योंकि इतना पुराना टूर्नामेंट भारत में खेला जाता है, तो ये दर्शाता है कि भारत में फुटबॉल की दीवानगी कुछ भी कम नहीं है। बस अब समय आ गया है कि अपने दीवानेपन को, अपने जज्बे को सभी लोग आएं और अपने ग्राउंड पर आएं, ग्राउंड पर आकर खेलें और दिखाएं कि वो कितना खेलों के प्रति जज्बा रखते हैं। खाली खेल देखने से बात नहीं बनेगी, खेलों को खेलना भी पड़ेगा। वहीं अब फुटबॉल की बातों को देते हैं विराम और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। और क्रिकेट में आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा, और भारतीय समय के अनुसार ये रात 10 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा। नॉटिंगहम में ये मुकाबला होगा और कई सारी चीजें इस मुकाबले के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पहला मुकाबला वर्षा के कारण बाधित हो गया था। दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने एक बड़ा स्कोर बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी की वजह से हम उस मुकाबले को नहीं जीत पाए और थोड़ा सा अधिक रन हमारे गेंदबाजों ने दे दिए। तो आज बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि कैसे भारत के कोच आज अपनी गेंदबाजी डिपार्टमेंट को मजबूत करते हैं, कैसे वो अपनी गेंदबाजी में अपनी लय को, अपनी धार को बनाते हैं, क्योंकि आज का मुकाबला जीतना बेहद आवश्यक है। सीरीज का तीसरा मुकाबला है ये, और अभी सीरीज में इस समय इंग्लैंड की टीम 1-0 से आगे बनी हुई है। और वहीं जब बात हुई कि क्या होगा आज के मुकाबले में, कैसे ये मुकाबला खेला जाएगा, तो उस पर भारतीय टीम के सहायक कोच शितांशु कोटक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: ऑनेस्टली आई फील सारे ही मैच इम्पोर्टेंट है, बट ऑब्वियसली बिकॉज लास्ट मैच क्लोज मैच हम लोग हारे, तो आई थिंक ये मैच भी इम्पोर्टेंट है सीरीज जीतने के लिए और आगे वाले भी। नॉट दैट पर्टिकुलर एक मैच हम सोच रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, आई थिंक एंड एवरी मैच इज आर इम्पोर्टेंट। टीम में जब ही आया ना वही बहुत, तभी सेट टू डेब्यू एनी वे, ऐसा

0: क्या प्रबंध किए जाए कि जिससे उसकी बधाई नीचे की जाए या लगभग कितने ऊपर की जाए, और जो छोटी बुयर हुए जिसमें पानी भर रहा है उसमें क्या प्रक्रिया की जाए या क्या उसमें उर्वरक डाले जाए जिससे कि वो भी बढ़िया पैदा हो सके और किसान भरपूर उत्पादन ले सके।
1: हाँ तेवतिया जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, आज का ये टॉपिक भी है। जैसा आप जानते हैं जो हमारी रेटून या पेड़ी की फसल है, आप जानते हैं कि भाई उसी वो फसल हमारी जो फसल की हाइट है 5 से 6 फीट की जब हाइट हो जाती है तो हमें ये आभास होने लगता है कि इसकी बधाई की बहुत आवश्यकता है। तो अभी जो पेड़ी वाले खेतों में हैं उसमें अभी अपने खेत की कंडीशन को देख के भाई इस बधाई को गन्ना गिरने पाए हमारा, और गन्ना गिरने बधाई के जो हमारे फायदे हैं उन फायदों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम जो है पेड़ी गन्ने की बधाई, जो अमूमन जुलाई प्रथम मध्य जुलाई से लेकर के अगस्त के महीने तक हम प्रारंभ करते हैं। जो सवाल आपने पूछा है पौधा गन्ने के लिए प्लांट केन के लिए, उसमें हमें दो चीजें किसान भाइयों को याद रखनी है। जैसे मानसून आ गया, आप भली भांति परिचित हैं कि एक हमें उसमें जो नाइट्रोजन की जो मात्रा हमें अपनी यूरिया से देनी है, एक तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो पूरी जो मात्रा लास्ट वाली जो हमारी डोज है जो हमें बेसल में देनी है, चाहे वो पेड़ी की फसल है और चाहे वो हमारी पौधा की फसल है, तो उसमें बरसात से पहले पहले हमें जो है यूरिया का छिड़काव या स्प्रे माध्यम से जो भी आप नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं वो मानसून से बरसात से पहले पहले आप उसको कंप्लीट कर दें। साथ ही साथ एक चीज का ध्यान रखना, जैसे आज का सवाल भी चल रहा था कि जिसमें आपको जो हमारी थर्ड ब्रूड चल रही है इसकी टॉप बोरर की, वो कम जो हमारी लेट प्लांटिंग है जो आफ्टर वीट हम गन्ने की बिजाई करते हैं, अमूमन हमारे आप बुलंदशहर से बोल रहे हैं तो बुलंदशहर मुजफ्फरनगर मेरठ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं के बाद काफी मात्रा में 30 से 40% बुआई होती है, जानते भी हैं आप। उसमें अगर किसी जी
0: साहब बोल रहे हैं
1: जी जी
0: अरे सर जी,

0: धन्यवाद
1: जी। तो उसमें आप उसमें तेवतिया जी आप जो है उसमें ध्यान रखना है, जो CTPR है अगर किसी वजह से कहीं विलंब हो गया है तो CTPR का इस्तेमाल जल्द से जल्दी करें, जिससे हमारी जो थर्ड ब्रूड है गन्ने की, जो तीसरी पीढ़ी का नुकसान होने वाला होता है, जो अब वो ब्रूड का समय चल रहा है, उससे गन्ने को हम अपने उत्पादन को प्रभावित ना करें और समय से उसकी चोटी बेधक की जो थर्ड ब्रूड है उसको नियंत्रण कर लें। तो पौधा गन्ने में हर हालत में आपने पेड़ी की फसल में उसको डाल लिया होगा, अगर CTPR कोरोजन आदि नहीं डाली है तो उसको आप डाल लें और इस तरीके से अपनी फसल की सुरक्षा रखते हुए उत्पादन को आगे बढ़ाते हुए कदम हमारी आपसे आशा है कि इन कामों को करके आपका उत्पादन अधिक से अधिक होगा।
2: जी तेवतिया जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर सिरोही जी ने आपके सवालों का बहुत विस्तार से जवाब दिया। और तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बंधाई की बात हो रही है, तो पहले तो कहते हैं कि कोई बार कार्य किया जाता है, कहते हैं कि इसका करने का हमें फायदा क्या, क्या महत्व है। डॉक्टर साहब चाहेंगे कि किसान भाई लाइन पे हैं, उनसे बात कर लें। हेलो,
3: हाँ जी सर, नमस्कार जी।
2: नमस्कार
3: सर, मेरा एक सवाल है।
2: नाम पता बताओ अपना।
3: मेरा अरुण कुमार नाम है, जिला शामली से, उत्तर प्रदेश।
2: जी जी जी,
3: मेरा एक सवाल ऐसे कि सर, जैसे मान लिया बारिश का मौसम है, अब जब टॉप बोरर चल रहा
2: जी,
3: और टॉप बोरर की पीढ़ी है कब तक है, किस टाइम तक रहेगी, और इसके स्प्रे जिस तरह बरसात में है, स्प्रे का समय कितना हो सकता है, कितने समय में पौधा एग्जोर कर लगा।
2: जी डॉक्टर अवधेश जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं।
4: अरुण जी, ये जो वर्तमान में टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी की जो मौत है वो निकल चुकी होगी इस समय, और उसने एगलिंग कर दी होगी पत्तियों के पीछे
3: जी।
4: ठीक है, अब आपको एक काम करना है, यदि आपने अपने खेत के अंदर CTPR का प्रयोग किया है, प्लांट के अंदर या रेटून के अंदर आपने फटेरा वटा को जो भी XYZ जो भी चीजें डाली हैं, अब ये सारी की सारी सिस्टमिक हैं, उसके सिस्टम में पहुंच गई, और जो उसने एगलेइंग करी है, एगलेइंग के 8 से 10 दिन बाद उसकी हैचिंग होगी, हैचिंग होने के बाद फिर उसके अंदर से कटरपिलर निकलेगा, और जब कटरपिलर निकलेगा, अगर आपने CTPR डाल रखा है, अगर वो कटरपिलर निकलेगा जब उस पत्ती पे मुंह मारेगा तो उसकी गट में प्रॉब्लम करेगा, और वो वहीं से आपकी फसल की सुरक्षा हो पाएगी यदि आपने प्रॉपर तरीके से CTPR का प्रयोग किया होगा उस स्थिति में। यदि आप चाहते हैं कि और कुछ हम करना चाहें, तो वर्तमान में सबसे बढ़िया चीज है टॉप बोरर के लिए लाइट ट्रैप
3: जी।
4: एक तो लाइट ट्रैप का आप प्रयोग करें, लाइट ट्रैप का प्रयोग करेंगे निश्चित रूप से सारी की सारी तितलियां उस लाइट के ऊपर आकर्षित होंगी, और नीचे उसके पानी रहता है। आजकल तो ऐसे लाइट ट्रैप आ गए हैं जिसके अंदर ल्यूर भी ऑलरेडी लगा हुआ है टॉप बोरर का
3: जी।
4: हर तरीके से फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप वो मिक्स कर रखा है उन्होंने, वो चीजें भी आ रही हैं, और शामली के किसान तो वैसे ही बहुत एडवांस है अपने आप में, मेरी समझ से आप उस चीज को समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, आप अपनी फसल की सुरक्षा कर पाएंगे। ठीक है जी, और क्या जानना चाह रहे हैं जी, बताइए।
3: मेरा ये जानना का था जी, जैसे मान लिया अभी 15 दिन या 20 दिन में हम स्प्रे करते हैं
4: जी,
3: तो स्प्रे का टाइम अगर ठीक चल रहा है, जैसे बरसात हो रही है अभी
4: जी,
3: तो मान लिया हमने 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद हमारी बारिश होगी
4: जी
3: स्प्रे के बाद में, तो कितने समय तक हमें स्प्रे जो है ठीक रहेगा जो बरसात ना हुए।
4: अच्छा, स्प्रे दो तरीके के हैं। आप यदि किसी फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, COC का स्प्रे कर रहे हैं, तो कम से कम स्प्रे होने के 5-6 घंटे तक अगर बारिश ना हो तो आप सेफ साइड रहेंगे। ठीक है,
3: ठीक है सर,
4: क्योंकि जैसे ही आप दवा डालेंगे, स्प्रे करेंगे, वो स्टोमेटा के माध्यम से अंदर तो जाएगी, उसमें कुछ तो समय अपटेक में लगेगा ना, ये चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: जी फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और किसान भाई का फोन लेते हैं
4: जी।
2: हेलो,
5: नमस्कार जी।
2: हाँ जी नमस्कार,
5: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
5: मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ सर
2: जी। कहाँ से सतीश कुमार जी?
5: मैं डिस्ट्रिक्ट भिवानी।
2: भिवानी से? हाँ, क्या सवाल है आपका
5: सर? असली बात तो यह है, किसान की आवाज नहीं आती रेडियो में।
2: किसान की आवाज रेडियो में नहीं आती? आपकी आवाज तो जा रही है
5: सर। मैं ये

0: यानी कि उस पर रख दिया, वो पानी टपकता रहे तो वो उसमें फैलाया जा रहा है पेड़ी में।
1: अच्छा,
0: तो क्या ये विधि इसकी सही है या इसका भी स्प्रे कर दिया जाए तो वो ज्यादा कारगर होगा या ये ज्यादा सही है?
2: ऐसा है, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ खान साहब। एक तो ये डॉक्टर साहब क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ अधूरी बात रह गई थी, जो CTPR जो आप स्प्रे की बात कर रहे थे ना कोरोजन की, ड्रेंचिंग की एक बार भी बात आपने स्वीकार नहीं करी। आपने करुआ नुमा वो बना करके अपनी स्प्रे पंप से जड़ों में आपने क्या इसकी ड्रेंचिंग करी थी क्या कोरोजन की?
0: नहीं, जड़ों में नहीं करते जी, हम तो इस पर पत्ते पे करते हैं, अभी करी हो। इसमें कोरोजन भी मिलाया, इसमें इमीडा और इसमें पिप्रोनील वाले जो वो लिसेंट आता वो मिलाया।
2: देखिए सुनो, आप ऐसा विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। अगर आपका जो पौधा गन्ना है, पेड़ी की फसल आपकी बड़ी हो चुकी है, जो आपका पौधा गन्ना है, इसमें अगर आप ड्रेंचिंग जरूर करें, उसी से आपका कंट्रोल नियंत्रण में हो जाएगा। जो आप ट्राइकोडर्मा की बात पूछ रहे हैं, उसे आप उस तरीके से लगा सकते हैं जैसे आप कह रहे हैं।
3: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल इनके सवालों का जवाब बाद में देंगे। अब
4: बहन भाइयों, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉलीहेलाइट।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। हमारा फोन इन कार्यक्रम हिंदी समाचारों के बाद भी जारी रहेगा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदूर तक फैली हुई है।
3: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदूर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
2: प्रधानमंत्री इस समय जकार्ता में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे अतुलनीय भारत की जीती जागती तस्वीर बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदि पूर्ण ऑफ द रिपब्लिक

0: ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20,00,000 किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए अब तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले ही पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4,00,000 से ज्यादा गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSE सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम कृषि जगत, जिसमें फोन इन कार्यक्रम जारी रहेगा।
2: बहन भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
1: IPL की पॉलीहेलाइट।
2: सजीव फोन इन कार्यक्रम में पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। जैसे कि बता दें, इससे हमारा फोन इन कार्यक्रम चल रहा है और जो हमारा पाठशाला है गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत जो विषय है हमारा, वो है गन्ने की बंधाई और देखभाल। और जो गन्ना विशेषज्ञ हैं वो है डॉक्टर अवधेश कुमार डागर, पूर्व गन्ना विशेषज्ञ, गन्ना अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरनगर।
3: जी बिल्कुल। और हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर DS सिरोही, वरिष्ठ गन्ना वैज्ञानिक मुजफ्फरनगर से। तो जो भी हमारे किसान बहन भाई हैं, गन्ने की खेती करते हैं, गन्ने की फसल से कोई भी सवाल है, समाधान चाहते हैं, पूछ सकते हैं, विशेषज्ञों से सीधा बात कर सकते हैं और समाधान पा सकते हैं।
2: तो चलते हैं,
3: नंबर एक बार फिर बता दे अपने बहन भाइयों को। बहन भाइयों, नंबर है 0112342082, और दूसरा नंबर है 2342103।

0: डॉक्टर अवधेश कुमार डागर जी और डॉक्टर सिरोही जी दोनों का कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। और जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं तब तक हम अपने कार्यक्रम पे चर्चा करते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे गन्ने की बंधाई के महत्व की बात हो गई और बंधाई का समय के और एक बंधाई का तरीका भी अलग अलग तरीके से भी किसान भाई बांधते हैं। तो डॉक्टर सिरोही जी जानना चाहूँगा कि क्या तरीका है सही से गन्ने की बंधाई का।
1: देखिए जैसा आपने सवाल किया है अभी जैसे अभी समय आने वाला है जैसे 5 से 6 फीट की हाइट गन्ने की हो जाएगी
0: जी
1: तो उसमें जो वहाँ का उसका मेथड है गन्ना ट्रेंच मेथड से बोया हुआ तो उसकी बंधाई दूसरे तरीके से करनी पड़ती है और जो हमारा 28-30 इंची पे आम बुआई करते हैं उसको दूसरे तरीके से करनी पड़ती है। किसान भाई को जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया है उसमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत इस बात की है कि जो ऊपर का पोर्शन है तना वो पत्ती के द्वारा जो सूखी पत्ती से बांधते हैं उसके ऊपर से बंधाई वो बाउंड नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे उसकी वृद्धि रुक जाएगी उसकी हवा रुक जाएगी। उसको विशेष तौर से ध्यान में रखने की जरूरत है कि उसको दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी है दोनों लाइनों को मिला करके उसकी नीचे से कम 4 फीट ऊंचाई पे
0: जी
1: पहली बंधाई वहां से प्रारंभ करनी चाहिए और ऊपर की साइड से उसको ना रोकें जिससे उसकी बढ़वार को प्रभावित ना हो ये विशेष ध्यान रखना।
0: कहने का मतलब जो गन्ने की पुरानी पत्तियां हैं
1: हाँ।
0: जो पीली पड़ चुकी हैं आधी सूख भी चुकी हैं उस पत्तियों से नीचे के हिस्से में बांधना है ऊपर
1: हाँ,
0: को जो जहां से हरी पत्तियां शुरू होती हैं उसकी बंधाई
1: नहीं करनी है।
0: और डॉक्टर साहब ये तो पहली बंधाई की बात हो गई और बहुत से किसान भाई दूसरी बंधाई करते हैं तो उसमें आधा एक बंधाई के गन्ने से लेते हैं आधा दूसरे से लेते हैं तो जिससे क्या है कि एक दूसरे से वो जुड़े रहते हैं और बरसात आने पे आपकी फसल गिरती नहीं है। मेन मकसद गन्ने का यही होता है कि फसल गिरे नहीं। डॉक्टर साहब एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो
2: हेलो डॉक्टर साहब मैं जिला आपसे से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी
0: हाँ क्या
1: बोले
0: नाम?
1: तो साहब
0: हाँ
2: करपाल सिंह नाम है जी मेरा।
1: क्या नाम है जी?
2: करपाल सिंह जी। डॉक्टर साहब राम राम।
1: राम राम जी राम राम।
2: मैं डॉक्टर साहब एक बात बोल के आ रहा जी खेत में पेट जी का खेत है जी उसमें पत्तों धब्बे आ रहे हैं जी।
1: धब्बे आ रहे हैं?
2: हाँ जी सफेद सफेद जी।
1: हाँ जी
2: तो उसमें क्या करा जाए?
1: आपकी वैरायटी कौन सी है चौ साहब
2: जी?
1: आपकी किस्म कौन सी है गन्ने की?
2: 38 है जी।
1: 38 है तो उसमें उसकी पत्ती के नीचे की साइड में आपको व्हाइट व्हाइट चित्तेदार धब्बे से नजर आ रहे होंगे।
2: हाँ जी धब्बे जगह जगह पूरे धब्बे पत्ते पे जी ऊपर नीचे जी।
1: हाँ तो अभी जैसे आप कार्यक्रम अगर सुन रहे थे अभी डॉक्टर साहब डॉक्टर डागर साहब ने बताया था उसको रिपीट कर देते हैं हम। वो माइट इस एक तरह का कीट होता है एक तो उसके कंट्रोल के लिए जैसे आपको अब मौसम खुलता है और आपको टाइम मिलता है इमीडा क्लोरपीट एक दवा होती है इमीडा उसमें थोड़ा सा एक नीम का तेल मिला करके पहला स्प्रे उसमें उससे कर दें उसी से इसका नियंत्रण हो जाएगा। बारिश हो गई है तो ये कोई अभी जो जैसा थोड़ा ये 0238 में ज्यादा देखने को मिल रहा है और एक ही स्प्रे से आपका इसका कंट्रोल हो जाएगा। चौधरी साहब
2: मैंने वो माइट दवा करी
1: कितने दिन पहले करी थी?
2: 2 घंटे पहले करी है बारिश हो गई।
3: वो तो दवा आपकी बेकार होगी चौधरी साहब ठीक है
2: तो एक आप
3: नहीं इसमें एक
2: नहीं
3: कुछ नहीं करना है आपको। बारिश हो गई है बारिश होने के बाद वातावरण के अंदर नमी आ गई है और धीरे धीरे ये जो वेबिंग माइट है इसको वेबिंग माइट हम बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में ये स्वतः समाप्त हो जाएगी और खास तौर से किनारों की तरफ के पत्तों पे आपको ज्यादा दिखाई दे रही होगी अंदर खेत के जाएंगे तो वहां पे आपको उतनी नहीं दिखाई देगी। ऐसा ही है
0: ठीक है। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब वो जिस तरीके से हमारे किसान भाई फोन कर रहे हैं निश्चित तौर पे गन्ने की फसल तो ऐसे इस समय बढ़वार पे भी है और लेकिन कई

0: के बारे में बात हो गई। डॉक्टर साहब, एक टॉप बोरर होता है
1: जी जी,
0: और ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है कि गन्ने की बढ़वार का।
1: जी जी जी,
0: क्योंकि वो ऊपर के ही गोब में उसको कट कर देता है, जिससे फिर गन्ना उसके ऊपर उसमें
1: नहीं
0: किले नहीं निकलते, मतलब ऊपर से खत्म हो जाता है
1: जी।
0: तो इस ये क्या है, कैसे इसके हमारे किसान भाई पहचान करें, और रोकथाम के लिए क्या इसके लिए कर सकते हैं?
1: एक्चुअल में इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सर्फोफेगा एक्सरपटेलिस
0: जी,
1: और उत्तर भारत के अंदर इसकी 5 या 6 पीढ़ियां पाई जाती हैं। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पे 7 पीढ़ियां इसकी मिलती हैं
0: जी।
1: क्योंकि उत्तर भारत में हम हैं इस समय, उत्तर भारत की बात करेंगे तो और बेहतर होगा। टॉप बोरर जैसा कि नाम है
0: जी,
1: हिंदी इसकी है चोटी वेधक, ये चोटी को वेधता है, जो गन्ने का बढ़वार वाला हिस्सा है, एपिकल पोर्शन जहां से गन्ने की वृद्धि होती है,
0: मुलायम हिस्सा, जहां
1: मुलायम हिस्सा
0: जी,
1: ये उसको खा जाता है। जब उसको खा दिया इसने, खाने के बाद फिर क्या होगा, पौधा बढ़वार लेना बंद हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो नीचे का रूट जोन तो उसका बिल्कुल सही है
0: जी।
1: अब वहां से पोषक तत्व आ रहे हैं, जो ऊपर की तरफ आंखें बनी होंगी वो आंखें जमाव ले जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है और आपकी पैदावार प्रभावित हो जाती है। अगर इसकी पहचान करने का सबसे सही तरीका ये है कि बीच की गोफ की जो पत्तियां होंगी उसमें छर्रे नुमा छोटे छोटे छेद एक सीद में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये खास पहचान है इसकी। और इसके लिए जैसा अभी बात कर रहे थे CTPR का, CTPR के साथ साथ एक चीज और मैं कहूंगा, उससे भी बढ़िया चीज है यदि हम लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करें। और अब जो बरसात चल रही है, बरसात के अंदर ट्राइकोकार्ड, जो इसके ट्राइकोग्रामा जेपेनिकम एक इसका अंड परजीवी है, वो 50,000 अंड परजीवी प्रति हेक्टेयर की दर से रोपित किए जाते हैं और हर 15 दिन के बाद
0: जी
1: ट्राइकोकार्ड को बदला जाता है, वो भी इसको कंट्रोल करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। यदि
0: बात करेंगे किसान भाई लाइन पे, हमसे बात कर लें। हेलो हेलो
2: जयेंद्र जी, नमस्ते।
0: नमस्ते,
2: जिला हापुर रंगा नई बात से बोल रहा हूँ मैं, घनश्याम
0: जी। घनश्याम जी, क्या सवाल है?
2: अरे डॉक्टर साहब को भी सबको राम राम।
3: राम राम जी, राम राम।
2: ये थोड़ा सा सफेद वाले धप्पे कीड़े, सफेद वाला
3: जी जी,
2: तो वो दिखाई दे रहा जहाँ
3: तक। वैरायटी आपकी कौन सी है?
2: हाँ जी,
3: किस्म कौन सी है गन्ने की आपकी?
2: जीरो जीरो, हाँ
3: जीरो 238।
2: हाँ हाँ,
3: ये नया बांस आपका फलकुआ के पास वाला है, गढ़ के पास वाला है?
2: गढ़ के ब्रिजघाट।
3: हाँ हाँ, देखिए ऐसा है, जैसा अभी हमारी चर्चा भी चल रही थी उसमें अभी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अभी कोई आपने स्प्रे तो नहीं करा है?
2: ना, अभी ना करा।
3: हाँ, तो एक जैसे मौसम खुलता है आप जो है दवा नोट करें, इमीडा क्लोरोपिड 17.8% वाली जो दवा आती है
2: जी साहब,
3: और उसमें थोड़ा सा नीम का तेल मिला लें
2: जी साहब,
3: उसका एक स्प्रे कर दें मौसम खुलने पर
2: जी साहब।
3: प्रथम स्प्रे से ही अब जैसे बरसात हो गई है तो उसी से वो कंट्रोल हो जाएगी और सबसे वो जो कीट है एक महीन वो जो है आपका खत्म हो जाएगा।
2: अच्छा अच्छा,
3: आइए
2: ये जो हम गन्ने के बनाई करते हैं, तो सूखा पत्ता नीचे का जब बनाई करते हैं
3: जी,
2: सूखा पत्ता उतार गन्ने के जब बनाई करते हैं।
3: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
0: ठीक है, बहुत अच्छा करते हैं आप निश्चित तौर पे।
3: राम राम,
0: फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे इसके टॉप बोरर की रोकथाम
1: की, टॉप बोरर की रोकथाम की बात चल रही थी
0: जी जी,
1: तो रिदिम थोड़ी सी टूट गई। टॉप बोरर के लिए मैं अभी ट्राइकोकार्ड की भी बात कही, रासायनिक कंट्रोल की भी बात कही, सबसे बढ़िया जो चीज है वो है प्रकाश प्रपंच, लाइट ट्रैप
0: जी।
1: लाइट ट्रैप, लाइट जलाने से शाम के समय कीड़े स्वतः आते हैं लाइट के ऊपर, और खास तौर से किसान भाइयों ने देखा होगा गांव के बाड़े के जो खेत हैं या गांव के चौगड़दे के जो खेत हैं, उन खेतों के ऊपर आपको टॉप बोरर का प्रभाव बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है, हाँ उसकी वजह यह है, गांव में शाम को लाइट जली, कीट पतंगे लाइट की तरफ आकर्षित हो गए और वहां जाके वो खत्म हो गए, मर गए। अगर लाइट ट्रैप आप लगा रहे हैं, खेत के पास लगा रहे हैं,

0: तो सीधी बात है गन्ने में 9 तरीके के बोरर लगते हैं। CTPR से तो आप सिर्फ टॉप बोरर को कम कर पाएंगे, लेकिन यदि लाइट ट्रैप लगाएंगे तो सारे 9 के 9 बोररों की मौत भी उसकी तरफ आकर्षित होंगी और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि लाइट ट्रैप थोड़ा सा महंगा, जरूर किसान भाई कह रहे हैं महंगा है, कोई बात नहीं, इस बार ईंक लगाया, अगली बार भी आप ईंक ही लगाएंगे, खेती ईंक की होनी है। जब ईंक की खेती होगी तो रासायनिक नियंत्रण से बढ़िया मैं समझता हूं कि प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप को यदि प्रयोग करेंगे और सामूहिक रूप से यदि प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से एक आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही टॉप बॉरर के, क्या गन्ने की फसल में ये मिली बग का भी प्रकोप रहता है?
0: मिली बग का भी प्रकोप है। अगर इस बार जहां तक मैंने वेस्टर्न यूपी का सर्वे किया है
1: जी,
0: इस बार टॉप बोरर और मिली बग दोनों ही बहुत ही कम या नगण्य, जिसको कह सकते हैं ना के बराबर है। मिली बग का भी प्रकोप देखने को मिलता है। ये गर्मियों में, जितनी भी गर्मी पड़ेगी, इंसेक्ट का अटैक गर्मियों में ज्यादा होता है क्योंकि पौधे के पास वो मॉइस्चर लेने के लिए आता है
1: जी।
0: और मिली बग खास तौर से वहां पे ज्यादा मिलेगा, या तो पेड़ की छाया में, या कहीं पे किसान भाई अपने खेत के पास वो गोबर की खाद के लिए जो कूड़ी गोबर डंप करते हैं जहां पे, वहां पर मिली बग का प्रकोप देखने को मिलता है। मिली बग के लिए खासतौर से ये प्लांट केन में नहीं मिलेगा, ये रेटून केन में सबसे पहले मिलेगा। और रेटून के लिए भी दवा वही है इमेडाक्लोरोपिट, लेकिन प्रयोग करने का तरीका अलग है। इसमें जो ग्रसित पौधे हैं उनकी पत्तियां उतार दी जाएं, पुरानी पत्तियां, और उसके बाद उसके ऊपर स्प्रे करा जाए वही 3 लीटर पानी में 1 ml दवा 17.8 SL वाला आप यदि डालेंगे, निश्चित रूप से आप मिली वक्त से अपनी फसल की सुरक्षा कर पाएंगे।
2: शिवदरन जी, मैं थोड़ा सा एक से बात करना चाह रहा था, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया लाइट ट्रैप के बारे में
1: जी।
2: उत्तर प्रदेश सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट जहाँ की भी हैं, वो लाइट ट्रैप पे सब्सिडी दे रही हैं। हर हर हर जिले में जो वहाँ की कृषि रक्षा इकाई है उन्होंने भी उसके लिए इंतजाम कराया हुआ है और काफी सब्सिडी पे 50-60% 70% की सब्सिडी पे मिल सकती हैं। और अपने चीनी मिल के माध्यम से भी बहुत सारी चीनी मिलें अपने सब्सिडी डेट पर दे रही हैं। इसके में अवेयरनेस की जरूरत है किसानों के लिए। मैं किसान भाइयों से सभी से गुजारिश करूंगा, जो इस समय चल रहा है टॉपर की थर्ड ब्रीड का, उसमें लाइट प्रपंच जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में लोग इसकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे और हम रासायनिकों के प्रयोग से
0: बच सकेंगे
2: और इसका इस फायदा जो है बहुत ज्यादा है किसान भाइयों के लिए। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों।
1: जी जी, बिल्कुल सही बात है कि किसान भाई जो भी कृषि रक्षा इकाई है जिले में वहां संपर्क करके इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और जो भारत सरकार की योजनाएं हैं जिनके द्वारा उन्हें सहायता मिलती है या सब्सिडी मिलती है उसका भी लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर जी, आपसे जानना चाहूँगा कि गन्ने की फसल में एक बीमारी आती है रेड रॉट
0: जी,
1: तो ये क्या है और किस तरीके से इसका प्रभाव होता है और कैसे किसान भाई इसको पहले से रोक सकें?
0: रेड रॉट दुनिया के शायद ही कोई कंट्री होगा जहां पे गन्ना बोया जाता हो और ये बीमारी ना आई हो। ये आती है, पेंडेमिक डिजीज है, वर्ल्ड वाइड है, लेकिन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब भी 238 की खेती हो रही है, लेकिन जो गंगा और जमुना के दोआब में तो थोड़ा सा कम प्रकोप देखने को मिला है, लेकिन गंगा, राम गंगा और गंगा के बीच की जो बेल्ट है, खासतौर से जो मुरादाबाद वाला क्षेत्र है, मुरादाबाद बिजनौर वाला, इसके अंदर रेड डॉट का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिला है और वो भी को 0238 के अंदर। इतना प्रकोप आया है कि क्रेसिंग सीजन कम हो गया। अब सवाल उठता है कि एक साथ वैरायटी नहीं बदली जा सकती है
1: जी। डॉक्टर साहब, इसकी रोकथाम के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन ले लें। हेलो
3: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी,
1: कौन भाई बोल रहे हैं?
3: तैमूर राणा बात कर रहा हूँ जी।
1: कहाँ से?
3: मुजफ्फरनगर से जी, बुढ़ाने से।
1: अच्छा, क्या सवाल है आपका राणा जी?
3: मेरा ये सवाल है जी, जैसे अब बरसात हुई है जी
1: जी,
3: तो इसमें एक तो माइट की समस्या आ रही जी और एक कीड़ी होती है जैसे थ्रिप्स कह रहे हैं, थ्रिप्स
1: जी,
3: वो आ रही है जी। क्या इससे बारिश से कुछ प्रभाव पड़ेगा
0: जी?
1: जी डॉक्टर साहब,
0: बारिश होने के बाद जो थ्रिप्स आप देख रहे होंगे, जो पत्तियों

0: टिप है ऊपर की, वो ऐंठ जा रही होगी। अगर उन टिप ऐंठी हुई पत्तियों को खोलते होंगे टिप्स को, तो छोटे छोटे से आपको कीड़े दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे ही पहली बारिश होगी, ये
1: जी
0: सारे के सारे थ्रिप्स आपकी खत्म हो जाएगी। इसमें कुछ भी रासायनिक नियंत्रण करने की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक प्रश्न आता है माइट का, और वो भी वेबिंग माइट जो व्हाइट वाली है, लाइन लाइन सी आपको दिखाई दे रही होंगी गन्ने की पत्तियों पे।
1: नहीं, वो धब्बे से भरे, गोल गोल से फेस से फेस से। जी
0: हाँ, ठीक है
2: तैमूर जी, मैं आपको समझा
1: हाँ
2: रहा हूँ।
1: जी
2: अभी हमारी यही चर्चा चल रही थी कि
1: जी
2: अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, गन्ने में कोई थ्रिप्स नाम की बहुत भयंकर कोई ऐसा कीट नहीं है ये, और जैसा अभी डॉक्टर साहब आपसे बता रहे थे।
1: सुनो डॉक्टर साहब, मैंने आपसे सवाल इसलिए करा, मैं भी सुन रहा था बहुत देर से।
2: जी जी
1: तो इसमें किसानों ने भी जवाब दे दिया, आपने भी दे दिया, तो थोड़ा सा क्या है जैसे मानने की बात है, माइट तो आप इमीडिएट से बता रहे,
2: हाँ
1: तो जैसे थ्रिप्स है ये तो बारिश से ही चला जाता है।
2: हाँ,
1: तो
2: चला जाता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ,
1: तो इससे भी ये बताओ किसानों की, अभी जी इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
2: हाँ, यही बात हम कह रहे हैं आपको, यही बात कह रहे हैं। इसमें थ्रिप्स के बारे में
0: अरे
2: किसान ने सवाल नहीं पूछा।
0: राणा जी, तैमूर, आपने बात मेरी शुरू से सुनी नहीं। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि हर ये माइनर इंसेक्ट हैं, इनके लिए रासायनिक प्रयोग की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही पहली रेनफॉल होगी स्वतः समाप्त हो जाएंगी।
1: जी, नहीं वैसे डॉक्टर जी आप वैसे बहुत अच्छा बताओ, आपने बता भी क्या लगा, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर इसमें जो है ना थ्रिप्स में थोड़ा सा मैंने मतलब बात क्लियर कर दी भाई,
2: ठीक बात
1: से क्या है। जी,
2: नहीं, जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं आपकी बात से, क्वेश्चन करने से, इसका सभी को लाभ होगा। तैमूर जी धन्यवाद।
3: जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे
0: रेड रॉट की।
3: हाँ, रेड रॉट की।
0: तो रेड रॉट को 0238 में सबसे ज्यादा आया, पहले ईस्टर्न यूपी में आया, ईस्टर्न यूपी के बाद सेंट्रल यूपी में आया, और सेंट्रल यूपी के बाद मुरादाबाद और बिजनौर वाली बेल्ट में है। अब धीरे धीरे इसका प्रकोप कम हो रहा है। CF13 एक नया आइसोलेट आया था, उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें दिखाई दे रही थी। जहां तक प्रश्न है कि कैसे कंट्रोल किया जाए रेड रॉट को, ये बड़े अपने आप में यक्ष प्रश्न है। और इसको कंट्रोल करने के लिए
3: जी
0: सबसे पहले तो ये कहा जाएगा कि वैरायटी का बदलाव हो। कहना बहुत आसान है, जो वैरायटी 90% तक थी उसका कैसे बदलाव एक साथ कर दिया जाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके लिए फिर हमें ट्राइकोडर्मा के पास आना पड़ेगा। ट्राइकोडर्मा की बात रह गई थी, किसान भाई पूछ रहे थे।
3: ट्राइकोडर्मा पे आएंगे, लेकिन एक किसान भाई से बात कर लें पहले। हेलो,
4: हाँ जी, नमस्ते सिमंदन भाई।
3: नमस्ते जी, नमस्ते।
4: और डॉक्टर साहब, उदय साहब को भी
0: नमस्कार जी, नमस्कार।
4: मैं डॉक्टर साहब पूछना चाहता हूँ, जैसे गन्ना ये कई बार
3: अपना
4: काना हो जाता है।
3: अपना नाम और पता बताओ, और रेडियो सेट थोड़ा दूर कर लो आप, या धीमा कर दो।
4: योगराज बोल रहा हूँ गुड़गांव से।
3: हाँ जी योगराज जी,
4: मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, आवाज इको हो रही है सर।
3: बिल्कुल, आवाज इको इसीलिए हो रही है कि आप पास में हो।
4: नहीं, ये मौसम की वजह से हो रहा है।
2: सवाल पूछे।
3: हाँ, क्या सवाल, क्या है आपका
4: सवाल? ये जो गंदा काना हो जाता है, कई बार हम देखते हैं जूस पीते हैं दुकान पे, तो उसमें लाल गंदा अंदर से काना भी होता है
2: जी,
4: तो इसका क्या कारण है डॉक्टर साहब बताएं?
0: देखिए, लाल, हर लाल रंग रेड रॉट नहीं होता है। वो गन्ने के अंदर स्टॉक बोरर हो सकता है या इंटरनोड बोरर हो सकता है। वो दो बोरर की वजह से, जैसे ही गन्ना को काटेंगे आप और वो हवा के संपर्क में आएगा, उसमें फिनोल जो हैं हवा के साथ रिएक्शन करके अपना कलर देते हैं, वो लाल रंग आ जाता है। लेकिन जो गन्ने की बात आप कर रहे हैं उसमें वो बोरर है, वो बोरर की वजह से लाल रंग है, वो रेड रॉट की वजह से नहीं है। ठीक है,
3: ठीक है योगराज जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि
0: रेड रॉट
3: के नियंत्रण के, और जिसमें आप ट्राइकोडर्मा की बात कर रहे थे।
0: तो अभी काफी तेजी से रेड रॉट आया है। इस बार मेरे को, अभी मैं गया था बिजनौर भी गया था, कई फैक्ट्रियों में गया हूँ, तो रेड रॉट अभी वर्तमान में कम देखने को मिला है, और किसान भी जागरूक हुए हैं
3: जी।
0: और जागरूक होने के साथ साथ सबसे ज्यादा जो प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग हुआ है।
3: जी।
0: और ट्राइकोडर्मा की 75 स्पीसीज हैं यदि हम पूरे की बात करें, लेकिन दो स्पीसीज रेड रॉट के सापेक्ष यदि बात करें तो बहुत कॉमन है, एक ट्राइकोडर्मा विर्डी और एक ट्राइकोडर्मा हार्जी।

0: किसान हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: किसान बहन भाइयों, आप कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रायोजित कार्यक्रम विशेष फोन इन कार्यक्रम था गन्ने की पाठशाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड।

मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में, इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ किसान।

0: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
1: गन्ने की पाठशाला, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे शिव नंदन लाल और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।
2: इसी के साथ आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सभी किसान बहन भाइयों को राम राम,
1: राम राम। और कार्यक्रम के संयोजक है शिव नंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ 7:30:15। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गजल कव्वाली। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हमने ली है फिल्म नाम से। गायक कलाकार हैं पंकज उदास और साथी, गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

एक बहुत ही खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम, फिल्म नाम से गायक कलाकार थे पंकज उदास और साथी। कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कव्वाली, फिल्म का नाम है दिल ही तो है। गायक कलाकार हैं आशा भोसले और साथी, गीत रचना है रावल फिल्म्स की और संगीत दिया है रोशन ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में बहुत ही खूबसूरत कव्वाली।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं। अंतिम रूप में हम जो आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जंजीर से एक ये कव्वाली मन्ना डे की आवाज में। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: इसी के साथ आज का गजल कबाली का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: कम्प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिला विकास समिति चेयरमैन अपेक्स कमेटी की बैठक में दिल्ली के विकास कार्यों की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियार रखने के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 9 जुलाई को हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ड्यूरेंट कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज जिला विकास समिति DDC चेयरमैन अपेक्स कमेटी की बैठक में दिल्ली के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की।
4: बैठक में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत जर्जर सरकारी विद्यालयों के पुनर्वास कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। श्रीमती गुप्ता ने आगामी कांवड़ यात्रा और मानसून के दौरान संभावित जलभराव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समन्वित और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री उदय योजना के अंतर्गत अनाधिकृत कॉलोनियों में विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित करने को कहा ताकि नागरिक इस वर्ष की 31 अक्टूबर से पहले अपना पंजीकरण करा सकें। अर्जु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
3: दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर लगभग 3 वर्षों से रिक्त दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनर्गठन किया है। महिला और बाल विकास विभाग की अधिसूचना के अनुसार ओम प्रकाश व्यास को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं राहुल गौतम, कुंदन कंसकार, स्वाति गुप्ता और मोनिका शर्मा को आयोग का सदस्य बनाया गया है। सभी नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनका कल्याण

0: दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आयोग का नया नेतृत्व बच्चों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 70 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत के साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने सेंट्रल रिज स्थित राष्ट्रपति अंगरक्षक दल परिसर और नानकपुरा रिज में पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सहित दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित रहे।
1: पौधारोपण अभियान के शुभारंभ के बाद श्री शाह ने 300 नई इलेक्ट्रिक बसों, 3 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो और नंद नगरी स्थित आधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की आधारशिला रखी तथा नरेला हाई सिक्योरिटी प्रिजन परियोजना का ई शिलान्यास किया। ये पहल स्वच्छ, सुरक्षित, आधुनिक और आत्मनिर्भर दिल्ली के निर्माण को नई गति प्रदान करेंगी। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यमुना सफाई के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के साथ मिलकर ऐसा तंत्र बनाया जाएगा जिससे गोबर का उपयोग गैस और प्राकृतिक खाद बनाने में हो तथा अपशिष्ट कचरे को यमुना में जाने से रोका जा सके। इसके साथ ही 11 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जो प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।
2: 300 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन का शुभारंभ किया गया और सबसे बड़ा जो आज के कार्यक्रम की आत्मा है, हमने रिज का पुनर्जीवन करने का, फिर से एक बार रिज को हरी करने का कार्यक्रम आज शुरू किया है।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार विकास और पर्यावरण को समान प्राथमिकता देते हुए राजधानी को अधिक हरित, स्वच्छ तथा टिकाऊ बनाने के लिए कार्य कर रही है।
3: इस पर्यावरण को संरक्षित करने का, 70 लाख पेड़ पौधे दिल्ली में लगाने के अभियान का शुरुआत होना हमारे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। केंद्र और राज्य जब मिल के काम करते हैं तब बड़े से बड़ा लक्ष्य भी दूर नहीं रहता।
1: इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाना, वायु प्रदूषण कम करना और जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा तथा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और गृहमंत्री आशीष सूद ने आज राष्ट्रीय राजधानी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 70 लाख पौधारोपण अभियान और कई परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। श्री मल्होत्रा ने दिल्ली परिवहन निगम DTC के बेड़े में 300 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का भी स्वागत किया। वहीं श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली के 250 वार्डो और 70 विधानसभा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री सूद ने कहा कि 5000 हेक्टेयर से अधिक रिज क्षेत्र को अधिसूचित करने, 1 करोड़ से अधिक देशी पौधे लगाने, 300 नई इलेक्ट्रिक बसों, नरेला उच्च सुरक्षा जेल, नए बस डिपो और स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र जैसी परियोजनाओं से राजधानी के पर्यावरण, परिवहन और उसके बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
4: हाई सिक्योरिटी, नरेला जेल और उससे महत्वपूर्ण दिल्ली के फेफड़ों के रूप में रिज को विकसित करने का काम हमेशा की तरह दिल्ली सरकार की हैंड होल्डिंग करते हुए आदरणीय गृहमंत्री जी ने दिल्ली की जनता के लिए अनेकों सौगात दी है और दिल्ली के पर्यावरण, दिल्ली की यमुना आदि चीजों में सुधार के लिए सदा अपना सहयोग वो देते रहे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया तथा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। टीबी उन्मूलन के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए श्री नड्डा ने सभी मंत्रालयों से अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया और टीबी मुक्त

भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 9 जुलाई को हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन इस वर्चुअल सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे। आयोग ने कहा है कि संबंधित अधिकारी अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसमें बंधुआ मजदूरों की पहचान, उन्हें मुक्त कराए जाने और असंगठित श्रमिकों के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण की स्थिति शामिल होगी। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारियों द्वारा आयोग की शिकायतों पर की गई कार्रवाई, बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के प्रावधानों के पालन और सर्वोच्च न्यायालय के बंधुआ मुक्ति मोर्चा तथा एशियाड श्रमिक मामलों में दिए गए आदेशों के अनुपालन की भी समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस ऑनलाइन सुनवाई में राज्य के मुख्य सचिव या उसके प्रतिनिधि, श्रम आयुक्त तथा संबंधित सभी जिलाधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में आज से राजभाषा हिंदी और विभिन्न कार्यालयों में उसका प्रयोग विषय पर 6 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के राजभाषा विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यान्वयन कुमार पाल शर्मा ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रभावी प्रयोग सुशासन और जनसंपर्क को मजबूत बनाता है। 13 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के राजभाषा विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यान्वयन कुमार पाल शर्मा ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रभावी प्रयोग सुशासन और जनसंपर्क को मजबूत बनाता है। 13 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राजभाषा नीति, कार्यालयी हिंदी और प्रशासनिक लेखन जैसे विषयों पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खेरवार ने आज दक्षिण दिल्ली के कटवारिया सराय, बेर सराय, डियर पार्क और एकता कैंप क्षेत्र का निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था तथा विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को विशेष सफाई अभियान चलाने, नियमित कूड़ा उठाने और मॉनसून से पहले नालों की समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री खेरवार ने कटवारिया सराय और डियर पार्क के ढलाव पर दो दो कचरा प्रबंधन प्रणालियां स्थापित करने के निर्देश भी दिए, जिससे कचरा प्रबंधन की व्यवस्था और बेहतर हो सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियार रखने के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 अत्याधुनिक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 2 चाकू बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी पंजाब के एक कुख्यात गैंगस्टर से प्रभावित होकर अपना गिरोह बना रहा था और हथियार जुटाने के लिए लूटपाट और झपटमारी जैसी वारदातों को अंजाम देता था। मामले में हथियारों के स्रोत और गिरोह की अन्य गतिविधियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 200 ग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल होने वाला एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। मामले में आगे की जांच अब भी जारी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये झूठा दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना भारत में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। उसने आगे स्पष्ट किया कि प्रसारित हो रहे वीडियो का इससे कोई संबंध नहीं है और ये भारत चीन सीमा से संबंधित भी नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू आज राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से उन्होंने मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस दौरान उन्होंने श्री गोयल के साथ दिल्ली के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि राजधानी में व्यापार, उद्योग और निवेश के मौकों को मजबूत करने, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 स्टूडेंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया और उन्हें झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय वर्षा के कारण लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। आज का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं सवेरे और दोपहर के समय कई जगहों पर हल्की बारिश होने की भी आशंका है। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिला विकास समिति चेयरमैन अपेक्स कमेटी की बैठक में दिल्ली के विकास कार्यों की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियार रखने के मामले में
चार अपराधियों को गिरफ्तार

तैयार किया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 9 जुलाई को हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में डोरेन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और इसके साथ ही ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। समय हुआ है 8:15। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म मोहरा से है। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और उदित नारायण। गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है विजू शाह ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म मोहरा से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत, फिल्म का नाम है दिल से। गायक कलाकार हैं सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी। गीत रचना है गुलजार की और संगीत दिया है AR रहमान ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म दिल ने फिर याद किया के शीर्षक गीत में। साथी कलाकार हैं गायक कलाकार सुमन कल्याणपुर और मुकेश, संगीत दिया है सैनिक ओएमआई ने और गीत रचना है जीएल रावल की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ली है हमने फिल्म कसूर से। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और उदित नारायण। गीत रचना है समीर की और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं गीत मालिका फिल्म संगीत, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है बेटा बेटी, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर।

के रूप में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जिसके गीत के बोल हैं रवैया वस्तावैया। ये जो गीत है हमने लिया है, फिल्म का नाम है श्री 420। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी।

0: और श्री 420 के इसी गीत के साथ ये आज का गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाईयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा समुद्री सुरक्षा व्यापार डिजिटल प्रौद्योगिकी शिक्षा एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया

0: यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
1: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांगी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
3: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
4: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
5: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले तीन वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
6: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
7: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the third T20 international of the five-match series in Nottingham tonight.

0: And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
1: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai. और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है
0: Here is more from our correspondent covering the Prime Minister's

0: ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 billion aspirations in motion.
1: The Prime Minister said India's journey towards self-reliance is becoming a multiplying force, not only for Indonesia, but for the entire ASEAN region. He stressed that India and Indonesia share a common vision of development

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय मईशत आलमी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रही है। आज शाम इंडोनेशिया के जकार्ता में वहां आबाद भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक अरब से ज्यादा ख्वाबों को परवान चढ़ाने वाला मुल्क है।
1: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
0: वजीर आजम मोदी को आज एक रस्मी तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो से, इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज द बिंतांग आदिपुर्ण से सरफराज किया गया। वजीर आजम मोदी ने इस एजाज के लिए तशक्कुर का इजहार किया और इसे भारत के अवाम को वक्फ किया।
2: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर एक तस्दीकशुदा पहल है जिससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फायदे हासिल हो रहे हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तवानाई की यकीनी फराहमी, हुसूलियाबी और जेर जमीन ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए मुतबादिल बायो ईंधन को फरोग दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुतबादिल ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी, ईंधन की दरामदात कम होगी, देही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा होंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जनाब गडकरी ने 14 किलोमीटर तवील जोजीला टनल, जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में 36 सुरंगों, केदारनाथ रोपवे समेत अहम प्रोजेक्टों और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वसत पा रहे सड़क रास्ते को भी उजागर किया जिनसे मुल्क में कनेक्टिविटी मुस्तहकम हो रही है और तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत समाजी और इक्तसादी तब्दीली की खातिर एक अहम तरीकेकार होना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। इस पहल का मकसद कौमी राजधानी में नबातियाती रकबे में इजाफा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस पहल का मकसद दिल्ली के माहौलियात को बदलना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने इस समत में मस्बत इकदाम किए हैं और 5000 हेक्टेयर रकबे को जंगलाती जमीन करार दिया है। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत ने अगले 4 साल के दौरान 6300 हेक्टेयर ग्रीन रिज रकबे को जंगलाती जमीन के तौर पर तैयार करने और उसका तहफ्फुज करने का अज़्म किया है।
3: ये रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: जनाब शाह ने आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत राजधानी को सरसब्ज, साफ सुथरी और ज्यादा पायदार बनाने की समत में काम कर रही है। इस तकरीब में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेन्द्र यादव, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज किया जिसका मकसद 20 लाख किसानों और 20,000 से ज्यादा जरई कारोबारियों को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब चौहान ने विकसित भारत के नजरिए को हासिल करने के लिए ज़राअत, خوشحال گاؤں اور خوشحال کسان بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر زراعت نے مزید کہا

0: أيها السادة، استمعنا إلى مجموعة من هذه الأغاني العربية الرائعة، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم حيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा

0: कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल पैनल को संबोधित किया। श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और रवांडा ने सैनिक ट्रेनिंग, संयुक्त सैनिक एक्सरसाइज, मेडिकल सहयोग और रक्षा उद्योग के क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। ये निर्णय नई दिल्ली में दो दिनों तक चली दूसरी संयुक्त रक्षा कोऑपरेशन कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। मंत्री ने भरोसा जताया कि उपभोक्ताओं के लिए स्थिति अच्छी बनी रहेगी क्योंकि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई बढ़ रही है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विमुक्तु, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमता और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के विभिन्न घटकों के तहत 1,10,000 से अधिक लाभार्थियों को सहायता दी गई है। इसमें शिक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य से जुड़ी पहलों को शामिल किया गया है। वायनाड के मेपर्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में आज रात खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। इसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said India follows the path of development and not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi vikasvad ki niti par chalta hai aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: The Prime Minister said the relationship between India and Indonesia is

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। श्रोताओं, समय हुआ है रात्रि के 1:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गीत सुनहरे का। गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप सुनते हैं पुरानी फिल्मों के गीत।

0: अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म मेला से मुकेश साहब और शमशाद बेगम की आवाज में।
1: एक प्रकार से

0: फिल्म बाबरी नैन से ये गीत आइए सुनते हैं मुकेश साहब और गीता रॉय की आवाज में।
1: ये तस्वीर तो मेरी है।
2: नहीं, ये उसकी है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है, और इससे मैं कहती हूँ

इसी के साथ श्रोताओं, गीत सुनारे कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत फिल्म श्री 420 से मुकेश साहब और साथियों की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता

0: बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल प्लेनरी को संबोधित किया। डॉ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और कोस्टारिका ने आपसी व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा करने और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की पहली मीटिंग वर्चुअल माध्यम के जरिए की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विमल आनंद और कोस्टारिका की फॉरेन ट्रेड की जनरल डायरेक्टर एड्रियाना कास्ट्रो ने की। बैठक के दौरान व्यापार और निवेश नियमों पर विचार साझा किए गए तथा आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ाने के मौकों पर चर्चा की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। मंत्री ने भरोसा जताया कि उपभोक्ताओं के लिए स्थिति अच्छी बनी रहेगी क्योंकि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई बढ़ रही है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। वायनाड के मेपर्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। नॉटिंघम के टेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए जिसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai. Aur isliye hum Bharat mein kehte hain, sabka saath, sabka vikas. Aaj main yahi mantra, yahi bhavana lekar, Indonesia ke aap sabhi sansad sadasyon ke beech aaya. भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: The Prime Minister said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and a common vision for the future. Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adi Purna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that a new chapter has been added to India's education sector with the approval for the Indian Institute of Management IIM Bangalore to establish an overseas campus in Indonesia. The proposal was approved by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Indonesia. He added that the establishment of an overseas campus of such a prestigious institution marks a significant step towards globalizing India's knowledge traditions and education system. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that ethanol blending program is a scientifically proven initiative that has delivered significant economic and environmental benefits. Addressing the Viksit Bharat Conclave in New Delhi yesterday, Mr. Gadkari defended the center's ethanol blending program, asking critics to show even one vehicle with issue due to the mixed fuel. He asserted that no such incident has taken place. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated that the India-Bahrain cooperation continues to deepen. Dr. Jaishankar concluded his two-day visit to Bahrain last evening. During the visit, Dr. Jaishankar had an audience with Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa in the presence of Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. During these meetings, the External Affairs Minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, and reaffirmed India's commitment to further deepening the long-standing and friendly bilateral partnership with Bahrain. Union Home Minister Amit Shah launched the mission to plant 70 lakh saplings in Delhi under the Ek Ped Maa Ke Naam Abhiyan to increase the green cover in the national capital. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the central government and the Delhi government has resolved to fully develop 6,300 hectares of green rich area into forest land over the next 4 years and ensure its protection. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said over 12 lakh saplings will be distributed free of cost and appealed the citizens to actively participate in the campaign. The India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Uttar Pradesh, Kerala, Mahe and Jammu and Kashmir and Ladakh for the next 3 to 4 days. Similar conditions are expected to prevail over north interior Karnataka, Saurashtra, Kutch, Vidarbh, Rajasthan and parts of northeastern region during the next 2 days. And in men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 international at Trent Bridge in Nottingham tonight. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 2:10 और यह समय है कार्यक्रम गीत बहार का। श्रोताओं गीत बहार कार्यक्रम में आप सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। आइए सुनते हैं ये गीत। सबसे पहले फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज का गीत बाहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रात्रि के तीन बजने को हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। पाकिस्तान में दो वर्ष पहले सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा आपातकाल घोषित किए जाने के बावजूद 2 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चे अभी तक शिक्षा व्यवस्था से वंचित हैं। इससे पाकिस्तान नाइजीरिया के बाद विश्व में स्कूली बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाला दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कल हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने इस वर्चुअल सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे। आयोग ने कहा है कि संबंधित अधिकारी अब तक की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसमें बंधुआ मजदूरों की पहचान, उन्हें मुक्त कराए जाने और असंगठित श्रमिकों के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण की स्थिति शामिल होगी। वायनाड के मेपर्डी में कल्लाडी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
3: Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of Memoranda of Understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that a new chapter has been added to India's education sector with the approval for the Indian Institute of Management, IIM Bangalore, to establish an overseas campus in Indonesia. The proposal was approved by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Indonesia. He added that the establishment of an overseas campus of such a prestigious institution marks a significant step towards globalizing India's knowledge traditions and education system. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that ethanol blending program is a scientifically proven initiative that has delivered significant economic and environmental benefits. Addressing the Viksit Bharat Conclave in New Delhi yesterday, Mr. Gadkari defended the center's ethanol blending program, asking critics to show even one vehicle with the issues due to the mixed fuel. He asserted that no such incident has taken place. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated that the India-Bahrain cooperation continues to deepen. Dr. Jaishankar concluded his two-day visit to Bahrain last evening. During the visit, Dr. Jaishankar had an audience with Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa in the presence of Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. During these meetings, the External Affairs Minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, and reaffirmed India's commitment to further deepening the long-standing and friendly bilateral partnership with Bahrain. Union Home Minister Amit Shah launched the mission to plant 70 lakh saplings in Delhi under the Ek Ped Maa Ke Naam Abhiyan to increase the green cover in the national capital. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the central government and the Delhi government have resolved to fully develop 6,300 hectares of green ridge area into forest land over the next 4 years and ensure its protection. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said over 12 lakh saplings will be distributed free of cost and appealed the citizens to actively participate in the campaign. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Uttar Pradesh, Kerala, Mahe and Jammu and Kashmir and Ladakh for the next 3 to 4 days. Similar conditions are expected to prevail over north interior Karnataka, Saurashtra, Kutch, Vidarbh, Rajasthan and parts of northeastern region during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Argentina defeated Egypt 3-2 in the round of 16 match in Atlanta. Argentina was trailing by 2 goals till 78th minute when the defending champions pulled off a stunning comeback. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है. समय हुआ है 3:10. आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गजल गीत. कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति कलाकार हैं जगजीत सिंह.

अभी जो गजल आप सुन रहे थे ये जगजीत सिंह के स्वर में थी, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए एक और गजल सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में।

0: कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं विनोद सहगल को एक बहुत ही खूबसूरत गजल के साथ, जिसके गुलुकार यानी कि रचनाकार हैं दलीप ताहिर।
1: यंगर जनरेशन के कुछ नाम मेरे जहन में उभरते हैं जिनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं, वो हैं विनोद सहगल, घनश्याम वासवानी और

और कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गजल। कलाकार हैं सुभाष आनंद, रचना है शिव साहिल की और कंपोजर भी हैं सुभाष आनंद।

0: और जगजीत सिंह की इसी बहुत खूबसूरत गजल के साथ ही आज का गजल गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं जी रघुरमन का बांसुरी पर बजाया गया राग मध्यमावती।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जी रघुरगम रमन का बांसुरी पर बजाया गया राग मध्यमावती वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन। देशभक्ति गीत का समय रहेगा 5:20। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे मल्लिका बनर्जी का गायन।

सुबह 7:10 पर कार्यक्रम होगा संगीतिका, जिसमें आप सुनेंगे द्वानी वी श्रीवास्तव के भजन। फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का समय रहेगा सुबह 7:30 और सुबह 8:45 पर शास्त्रीय संगीत

साइंस मैगजीन कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9:15 और दिन में 9:30 पर मिट्टी दी महक कार्यक्रम सुना जा सकेगा।

0: दिन में 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस, और 11:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी के अंतर्गत आप सुनेंगे चंद्रनाथ भट्टाचार्य का गायन। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बहरीन के बीच सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन की यात्रा के दौरान क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा की मौजूदगी में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने बहरीन के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। संवेदनशील जिलों में पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि भारत ने कूटनीतिक बातचीत, समय पर नीतिगत कदम, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और अलग अलग स्रोतों से तेल आयात करने जैसे उपायों से ऊर्जा क्षेत्र में आई सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में खेले गए मैच में दोनों टीमें निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
3: Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said the domestic petrol and diesel prices are expected to move in a positive direction if international crude oil prices remain stable or decline. The minister expressed confidence that the outlook for consumers remains favorable as global oil and gas supplies continue to expand. Addressing the Viksit Bharat Conclave 2026 in New Delhi, Mr. Puri said, India successfully weathered one of the most challenging global energy disruptions in recent decades through a combination of diplomatic engagement, timely policy interventions, enhanced domestic production and diversified imports. He said the country's experience demonstrated the importance of long-term energy reforms in ensuring energy security. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has stated that the India-Bahrain cooperation continues to deepen. Dr. Jaishankar concluded his two-day visit to Bahrain yesterday. During the visit, Dr. Jaishankar had an audience with Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa in the presence of Crown Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. He also had a separate call on Deputy Prime Minister Sheikh Khalid bin Abdullah Al Khalifa. During these meetings, the External Affairs Minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, and reaffirmed India's commitment to further deepening the long-standing and friendly

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 5:10 और 18 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय है पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन। प्रस्तुत करता है योग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमानी श्योखन।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी, जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़े, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आए, श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आए। अभ्यास के अंत में शव आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे

पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं। घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखंद, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति